0: 1-888-9914 and take control of your financial future.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: आप सुन रहे हैं फनेश्वर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी। एक घंटे हो गए हैं मुझे आपके साथ और दो घंटे और बाकी है, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ अगले दो घंटे तक। अगर आपसे भी ये हो सके कि आप मेरे साथ दो घंटे बने रहिए तो क्या मजा ही आ जाए। आज हमने बहुत सारी बातें की उन मूवीज के बारे में जिनकी एंडिंग हमें कुछ खास पसंद नहीं आई, हमें दुख हुआ, हार्ट ब्रेक मोमेंट्स थे, इमोशनल थे, लेकिन क्या करें, अब होती, मतलब हर मूवी के हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। हम कितना चाहते हैं कि हीरो और हीरोइन जो है साथ में आ जाए, विलेन को पनिशमेंट मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और कभी कभी तो हमें कुछ मूवीज इसीलिए याद रहती है क्योंकि उनकी एंडिंग ना थोड़ी सी ट्विस्टेड रहती है, उनकी एंडिंग में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी मूवी हमें याद रह जाती है और उसको स्पेशल बना देती है। चलिए इसके साथ ये सेगमेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगला शुरू करते हैं। अगला जो है एक गिव अवे राउंड है, लेकिन एक गाने के बाद।
1: Take it away!

0: सोने दे रख रही है तो सोने लगते ही है, लेकिन चंडीगढ़ बाइट्स की जो खाना होता है वो भी काफी सोने लगते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और अभी आपके पास एक मौका है वहां पे $10 का डिस्काउंट पाने का ऑन अ बिलिंग ऑफ $50, तो तैयार हो जाइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आपको उसका जवाब देना है मुझे कॉल करके, और जो भी सबसे पहले जवाब देगा, बेसिकली इजी रखते हैं ठीक है, उसको ये गिव अवे मिलेगा। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं चाहूंगी कि लिसनर्स ऑन एयर आए। मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उससे आपको 3 सॉन्ग्स के नाम बताने हैं ऑन एयर आके। सो आई विल बी वेटिंग। आज का जो वर्ड, जो शब्द है वो है जरा। आपको वो 3 सॉन्ग्स बताने हैं जिसमें ये वर्ड जरा आया हुआ है और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ। तो भाई कॉल कीजिए, कॉलिंग नंबर है हमारा 972-235-5555। आई विल रिपीट द नंबर, इट्स 972-235-5555। तो बेसिकली 3 ही सॉन्ग बताने हैं, थोड़ा थोड़ा सोचिए कि वो कौन से 3 सॉन्ग हैं जिसमें ज़रा वर्ड का यूज़ हुआ है। और उसमें से तो एक सॉन्ग ऐसा भी है जो मैंने पिछले आर में बजाया भी था। वी हैव अ कॉलर, आई एम गोना टेक हिम और हर ऑन एयर, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो, यू आर ऑन एयर। हेलो
1: हेलो, हाय
0: हाय, हाउ आर यू? व्हाट आर द 3 सॉन्ग्स जिसमें जरा वर्ड का यूज हुआ है?
1: जरा जरा महकता है, दैट्स वन।
0: अमेजिंग, यस। नंबर 2,
1: जरा सा झूम लूं मैं,
0: अरे ना अरे ना अरे ना। एंड व्हाट्स नंबर 3?
1: जरा पास आओ मुस्कुराओ,
0: यस। व्हाट्स योर नेम?
1: श्रेया देसाई।
0: ओके श्रेया, आई एम गोना टेक योर डिटेल्स बिकॉज आप तो जीत गई हैं चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे, और बाकी हमारे लिसनर्स के लिए आई एम गोना प्ले द सॉन्ग। आप प्लीज होल्ड पे आइए, ओके?

इसके साथ हमारा गिव अवे राउंड यहीं खत्म होता है। आज की हमारी विनर है श्रेया देसाई, कांग्रेचुलेशंस। आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50। डाइन इन ऑप्शन पे है ये, और चंडीगढ़ बाइट्स में ना स्पेशल थाली भी मिलती है मंडे से फ्राइडे, और इनकी जो डिशेज होती हैं लंच के टाइम पे वो रोटेट होती रहती हैं डेली। मतलब अगर आप मंडे को गए उस टाइम पे कुछ खाना मिला जैसे आपको, वो रिपीट नहीं होगा ट्यूजडे को, और वेंसडे भी अलग होगा और थर्सडे भी अलग होगा। Is it interesting? और ये located है ऑफ आई थिंक इट्स लोकेटेड इन एलन एट मैकडरमट ड्राइव। और अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए इस पे, जैसे कि मेन्यू हो गया या ओपनिंग या क्लोजिंग आवर्स, तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज chandigarhbites.com। और सवाल हमने पूछा था कि जो वर्ड है, जो शब्द है जरा, उसके अराउंड सॉन्ग्स आपको बताने थे कि कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनमें कि इस वर्ड का यूज हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने कॉल करके उसका आंसर दिया है। एंड आई एम गोना प्ले द next of the same word zara।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
2: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
6: What?
7: This friendship day bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive Media Partner, Pan Asia.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी और आपका और मेरा साथ अभी 9 बजे तक होने वाला है, तो स्टे ट्यून रहिए भाई। और अगर ना आपके ऐसे नींद और बेचैनी जैसी चीजें हो रही हैं इश्क की वजह से, तब तो ये आपको ही सॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका रीजन है कि आपको अपना एक प्यारा सा छोटा बड़ा जैसा भी अपना घर चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बता सकती हूँ। आप ड्रीम होम मॉर्गेज जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, आपके ड्रीम होम के सपने को। 1998 से वो बहुत सारी फैमिलीज की मदद करते आ रहे हैं अक्रॉस दी कंट्री। भाई उनके पास तो सारे 50 स्टेट्स के लाइसेंस भी अवेलेबल है, प्लस एक्सपीरियंस तो है ही। तो ये सब कुछ जब मिलता है ना, तो आपके लिए अगर आपको एक लोन ऑप्शन वगैरह में भी हेल्प चाहिए, तो भी आपकी हेल्प कर देंगे, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, या फिर रीफिनेंस कर रहे हो, आप अपनी होम ओनरशिप की जर्नी जो है अभी कॉन्फिडेंस से शुरू कर सकते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ। आप उन्हें कॉल करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं नंबर बता देती हूँ, इट्स 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ताकि आपका जो घर का सपना है ना, वो पूरा हो जाए। Where's the money?

दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज. और भी बहुत सारी गुड न्यूज है भाई. प्रभु देवा लाइव आने वाले हैं डैलस में. पहली बार मथांगे एंटरटेनमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है ये इंडिया के माइकल जैक्सन को डैलस में लाने का पूरा इवेंट अमेजिंग होने वाला है. और वो अकेले नहीं, बहुत सारे अमेजिंग डांसर्स के साथ आ रहे हैं. उनमें से कुछ का नाम मैं अभी लेती हूँ. एक हैं लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नोवेल और हरिणी भी है, नताशा भी है और सानवे मेघना भी है. मतलब जिनके डांस आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया पे देखते रहते हो ऑन द स्क्रीन, अब उनको लाइव देखने का वक्त आ गया है. ये हो रहा है सैटरडे अगस्त 1 को एट टेक्सस ट्रस्ट सी यू थिएटर एट ग्रैंड प्रेरी. और अगर आपने अभी तक अपनी टिकट्स नहीं बुक की है ना, तो नंबर मैं बता देती हूँ. चलो आप लिख लिए और फिर जब भी आपको टिकट लेनी हो आप कॉल कर ले. नंबर है 2482333828. इट्स 2482333828. या फिर आप एक काम कीजिए, आप फनेशा के सोशल मीडिया पेजेस पे जाइए. वहाँ पे आपको ना बहुत सारे पिंड पोस्ट मिल जाएंगे विथ इंटायर डिटेल्स की कैसे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट हेयर इट कम्स, उर्वशी उर्वशी फ्रॉम प्रभु देवा. इट इज़ अनदर मास्टर पीस ऑफ प्रभु देवा गाइज.

देखिए, यूजुअली तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग सेफली ड्राइव करें, यू नो, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें. अच्छे से जो है, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है विजन वगैरह में, तो ड्राइव ना करें, किसी और की हेल्प ले लें, किसी और के साथ चले जाएं. लेकिन ये सारे कुछ सावधानियों और प्रिकॉशंस के बावजूद अगर आपका कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो जाता है, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर योर केस. और ये आपसे तब तक पैसे नहीं लेंगे जब तक कि आपका ड्यू कॉम्पन आपको मिल नहीं जाता. आपको तो पता ही है कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह से डील करना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. और ये स्ट्रेस जो है आपको आपको फोकस नहीं करने देता है ऑन रेगुलर थिंग्स इन लाइफ. बट डोंट वरी, यू हैव गॉट इट ऑल कवर्ड वाया अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. और उनकी टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड है. और आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कॉल करें एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomer.com.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, men's and kids wear.
10: Wait, itna sab aur price?
9: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
11: Main hero in hu.
12: Beta, 95% aaye?
13: Haan mummy.
12: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
14: Mera?
12: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, सारे accounts updated.
14: वो
15: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
17: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
16: What?
18: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

0: भाई ये लड़की भी आपकी दीवानी ही है। आप सुन रहे हैं फनेश्वर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी, आपका और मेरा साथ होने वाला है अभी एक और घंटे तक। लेकिन मुझे जितना भी टाइम दे दो ना आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वक्त कम ही पड़ जाता है। कितना कुछ कहना है आपसे, कितनी सारी बातें करनी है, कितना कुछ बताना है, बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स प्ले करने हैं, चलता रहेगा। और जो हम अभी ना वीकेंड है भाई, और वीकेंड में हम गेम्स ना खेले ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं आपको एक वर्ड दूंगी और आपको उससे मुझे कॉल करके बताना है तीन सॉन्ग्स जो कि उस वर्ड से शुरू होते हो या फिर फर्स्ट लाइन में आते हो, जैसा भी आपको याद आ रहा हो। और जो है ये वर्ड है कोई, ठीक है? इस वर्ड से अगर आपको सॉन्ग पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है। अभी नंबर मैं बता देती हूँ, इट्स 972-235-5555। मैं देखिए भाई वेट कर रही हूँ। कोई वर्ड तो बहुत सारे गाने में आते हैं। मैं एक और बात बता देती हूँ कि इस पे कोई गिव अवे नहीं है, जितने भी गिव अवेज थे ना वो तो हमने सारे दे दिए। आई एम वेरी सॉरी कि इस वाली चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन आई होप ओके वी हैव अ कॉलर ऑन एयर, लेट्स टेक हिम और हर। हेलो, यू आर ऑन एयर।
1: हेलो,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम? ओके रहीमा जी, बताइए वो तीन सॉन्ग जिसमें कोई वर्ड का यूज हुआ है।
1: कोई मिल गया,
0: यस कोई मिल गया। नेक्स्ट
1: तीन सॉन्ग
0: कौन सा? सॉरी,
1: ओ मुझे ऐसा लगा एक ही सॉन्ग।
0: हाँ तीन सॉन्ग है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी बाकी लोगों के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड बाकी लोगों के लिए लाइंस खुली हुई है भाई। बताइए वो तीन सॉन्ग जिसमें वर्ड कोई यूज हुआ है।

0: हमारे साथ एक लिसनर जुड़ी हुई है ऑन एयर. हेलो, यू आर ऑन एयर.
1: हाय, दिस इज रश्मि.
0: हाय रश्मि, आपको बताने हैं तीन सॉन्ग जिसमें कि ये वर्ड कोई यूज होता है.
1: ये है कोई कहे कहता रहे,
0: या फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है. नंबर टू प्लीज.
1: कोई मिल गया.
0: अरे वाह, आप तो काफी अच्छा गाती है रश्मि. एंड व्हाट्स नंबर थर्ड?
1: शाहरुख खान का.
0: शाहरुख खान का कौन सी? हाँ,
1: कोई मिल गया.
0: यस, यू गॉट इट ऑल राइट गर्ल, कांग्रेचुलेशंस. एंड अभी हम ना, आप जो थर्ड सॉन्ग बोला है वो बजाने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच रश्मि फॉर कॉलिंग. इट वाज लवली हैविंग यू ऑन फोन विद अस. हैव अ गुड डे.
1: यू टू. थैंक यू.
0: बाय बाय गाइस. चलिए अब कोई मिल गया गाना एंजॉय करते हैं.

भाई हमें भी मिल गया है होको ब्रांड, जो फूड ब्रांड काफी फेमस है, जिसको कि खाने के लिए लोग कभी कभी जब भी इंडिया जाए तो होको जरूर जाते थे कि भाई ये तो टेक्सास में नहीं मिलने वाला। लेकिन चिंता नॉट, फिकर नॉट, क्योंकि होको जो है अब आ गया है हमारे नॉर्थ टेक्सास में, और तो और क्लोजर बता देती हूँ, फ्रिस्को में आ गया है भाई। इट्स लोकेटेड एज 2693 प्रेस्टन रोड, सूट 1000 फ्रिस्को में है। और यहाँ के जो मतलब अगर मुझे ना जैसे ही होको याद आता है तो कुछ अमेजिंग उसकी डिशेस याद आ जाती है, जैसे कि चना पूरी और उसके सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और उनका फेमस कोल्ड कोको, जिसको तो मतलब आप जाए तो ये तो खाना ही है, इसके साथ आप एक और कुछ जरूर वहाँ पे ऑर्डर करेंगे। तो आप जरूर जाए होको। और अभी तो खाने का टाइम हो गया ना, तो ये सब सोच के मुझे तो भूख लगने लगी है। बाय गॉड।

देखिए मैं भी इतनी ही एनर्जी और यही वाइब लेके आती हूँ कि मैं भी अपने शो पे यू नो धूम मचाऊंगी। आई होप आप सबको ये शो पसंद आ रहा होगा। मैं हूँ आरजे सिमी एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। इनके पास अमेजिंग एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यू नो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर आपका कोई स्टार्टअप है या फिर कोई वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है और आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल हैं जो कि अभी तक अनटैप्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो एजी फिनटेक्स इज डेफिनेटली द राइट चॉइस फॉर यू। वो आपके ना बेस्ट ऑफ पोटेंशियल्स को बताएंगे, आपको उनको एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है गाइस, एफिशिएंट भी हैं और आपके पूरी टैक्स प्लानिंग और टैक्स कंप्लायंस सारी लीगैलिटीज़ का भी अच्छे से ध्यान रख लेते हैं ताकि आप चैन से सो सके, आपको रात में टैक्स वैक्स कैसा ना ख्याल ना करे। और क्योंकि ना मुझसे पूछे तो ये टैक्स कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होता है। आपको अगर उनसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पर जाइए, which is AJFinTax.com।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
10: वो नहीं आने वाली,
11: आने वाली,
10: वो बेवफा, छलावट की, छलावट की, छलावट की।

नहीं, ये कंप्लेन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तो आई हुई हूँ भाई, मैं यानी कि आरजे सिमी, और आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 FM। और अभी मेरा और आपका ना साथ है मोटा मोटी आधे घंटे तक तो है, तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं तो आती हूँ, मिलती हूँ, कुछ अगर नहीं मिलता है और तो वो है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट स्केड्यूल, और अगर वो मिल भी जाए तो फिर आप उनके साथ जो है टाइम नहीं मिलता, मतलब 5 से 10 मिनट में जो है आपको फटाफट डायग्नोस कर दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा एक जगह पे नहीं होता है, मैं बताती हूँ कौन सी जगह है वो। वो है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर के साथ पूरे के पूरे आधे घंटे मिलते हैं, ताकि आप उनको सब कुछ अच्छे से बता पाए कि क्या तकलीफ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ, कि यू नो कब से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि आपके हेल्थ को समझने के लिए 5-10 मिनट काफ़ी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि अच्छे से आपका डायग्नोसिस हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप हो गया, एंग्जाइटी केयर अगर आपको कराना है तो भी आप जा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन होता है यहाँ पे किसी भी अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न के लिए, और विटामिन डेफिशिएंसी की भी टेस्टिंग होती है, तो वो तो आपको टाइम टू टाइम कराना ही चाहिए, ताकि आपको जो है प्रोएक्टिवली पता चल पाए और आप एक्शन ले सके। वो तो आपने सुना ही होगा ना भाई कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर गाइस। तो आप अपना स्केड्यूल अपॉइंट सॉरी अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना है तो आप कॉल कीजिए 214-666-6259 और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी।

इट इज मेरा भी यही मानना है कि जितना भी वक्त हमें मिल जाए ना वो कम ही पड़ता है। अब आज की बात देख लीजिए कि पूरे 6 से 9 बजे तक मेरा और आपका साथ था, टाइम कैसे खत्म हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यार ये 3 घंटे भी काफी नहीं है, मुझे तो बहुत सारी और बातें करनी है। खैर जाने से पहले बहुत सारी अभी भी टाइम है यार, मतलब कर सकते हैं कुछ बातें। आपको बने रहना है लेकिन फन एशिया के साथ ही 104.9 FM, क्योंकि यहाँ मिलता है अच्छे अच्छे गाने, एकदम ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम हिट्स सॉन्ग्स बजते रहते हैं यहाँ पे। तो आपको अच्छे गाने के लिए तो फनीशा पे रहना है, और अच्छे फिनेंशियल गाइडेंस के लिए माई टाइम इक्विटी के पास जा सकते हैं, विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई। ये ऑफर करते हैं बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज भी बताएंगे आपको, और आपके करेंट इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है, वो अगर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में वो टर्म यूज किया हो लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि क्या आप मिस कर रहे हैं अगर आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब भी आपको बताएंगे। तो जरूर विजिट कीजिए mytimeequity.com, ये उनका वेबसाइट है। और अगर आपको कॉल करना है तो नंबर मैं बता देती हूँ, इट्स 4697021272। आई रिपीट द नंबर इज 4697021272।

देखिए रात तो काली हो गई है, लेकिन इसके पहले कि ये काली रातें और काली हो, यानी कि और अंधेरी हो, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा वक्त भी खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। आई होप यू लाइक इट, और आई होप कि आपका पूरा दिन आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहा होगा। वीकेंड है भाई, तो अपना फेवरेट म्यूजिक लगाइए, कुछ टेस्टी खाइए, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और खत्म नहीं हुआ है, अभी वीकेंड है, अभी तो संडे आने वाला है, तो एक पूरा का पूरा दिन आपके पास और है, तो आप जरूर इंजॉय करें और मुझे इजाजत दें क्योंकि मेरा जाने का वक्त हो गया है। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
5: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

ताई चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए ताई चलते प्यार।

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
1: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
0: व्हाट
2: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.

0: मैं हूं उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.
3: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: सर, लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा बच गया साहब।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
6: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारी

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% आए?
4: हाँ मम्मी.
3: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
3: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का टैग फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन Fun Asia Radio।
5: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, Fun Asia पर ही आते हैं।
7: Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
9: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
8: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
10: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा।
11: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
12: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
11: Visit Fan Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
11: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
18: इंडिया में?
14: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है. वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका स्वागत करती हूं. ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल डे. नया दिन, एक और खूबसूरत सा दिन संडे आया है. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ स्टूडियो में मैं मौजूद होती हूँ. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. और बस इसी नंबर पर आप कॉल्स करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. आज शो में, मेरे इस शो में 3 घंटे का ये जो शो होता है, इसमें अबाउट 90% जो सॉन्ग्स हैं वो आप ही की चॉइस के होते हैं. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. मुझे लगता है कि 90% के बजाय 100% आप ही के पसंद के सॉन्ग्स होने चाहिए. बट कोई बात नहीं, देयर शुड ऑलवेज बी अ लिटिल बिट ऑफ अ विगल रूम. तो 10% जो है मैं अपनी चॉइस के सॉन्ग्स लगा देती हूँ. स्वागत करती हूँ आप सबका. आज एक और नया दिन, 7/26 यानी कि July 26 है. आज आखिरी संडे है जुलाई के महीने का. गर्मी बहुत हो रही है. जुलाई तो डैलस में काफ़ी गर्म महीना होता है. अगस्त भी गर्म होता है. सितंबर में जाकर कहीं थोड़ा जो है ठीक ठाक हो जाता है मौसम. हैंग इन देयर. और ये वाला जो टाइम है, फिर इसके बाद तो देन फॉल आ जाएगा, फिर विंटर आ जाएगी, फिर स्नो पड़ जाती है, एंड देन थिंग्स जस्ट चेंज कम्प्लीटली एज फार एज नेचर इज कंसर्न. आपका दिन अच्छा शुरू हो, आपका दिन जो है मुस्कुराहट से शुरू हो, तो बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. आप ट्यून्ड इन है 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर. मैं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. शो का आगाज करते हैं.

यार रहमान का मैजिकल एंड आइकॉनिक म्यूजिक रहा इस फिल्म के लिए, जिसका नाम जोधा अकबर जो आई थी 2008 में. ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन फिर से नज़र आए थे इकट्ठे इस बड़े पर्दे पर इस फिल्म में. एंड दिस फिल्म गार्नर्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस. बहुत अच्छी फिल्म बनी थी. बहुत ही टाइम लगाकर काफ़ी डिटेल्ड ओरिएंटेड इस फिल्म को बनाया था. एंड आशुतोष ग्वारिकर तो हमेशा से ही बहुत बारीकी में जाते हैं. वो कोई भी ऐसी एपिक हिस्टोरिकल फिल्म बनान जब बनती है तो काफ़ी रिसर्च जाती है. कॉस्ट्यूम से रिलेटेड स्टोरी तो ऑफ कोर्स दे हैव टू कीप इट एज जेन्युइन एंड एज ट्रू दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री. और फिर कॉस्ट्यूम्स भी बहुत बारीकी से एज क्लोज टू द रियल वंस एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स ग्लैमर भी थोड़ा डालना होता है ताकि आज की करंट ऑडियंस को अभी जो है अपील करे. सो इट वॉज नॉट ओनली अ वंडरफुल मूवी, अ स्क्रिप्ट, बट ऑल्सो अ ट्रीट टू द आईज. इसका फिल्म का नाम जोधा अकबर. सो थैंक यू सो मच. आप लोग सब जुड़े हुए हैं. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. बस फ़ोन करते रहें, बता दीजिए कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनोगे. दिस इज़ आर जे एक रूप. आई एम गोना बी हियर इन द स्टूडियो फ्रॉम 7 to 10. 3 घंटे का ये शो आता है. संडे के संडे मेरी आपसे मुलाकात होती है. एंड लाइक आई सेड कि आप ही की चॉइस के सॉन्ग्स प्ले होते हैं मोस्टली. टुडे इज़ द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ विच इज़ जुलाई. और आज की जो डेट है वो है जुलाई 26. तो बस नेक्स्ट वीक जब मैं आपसे मिलूंगी तो फिर वो पहला संडे होगा अगस्त का. अगस्त 2nd होगी उस दिन तारीख.

इतना अच्छा प्लेफुल सा सॉन्ग है, देवानंद साहब पर फिल्माया गया, एंड CIG फिल्म दैट केम आउट इन 1956, इसमें शकीला जी भी हैं. और जो ये आवाज़ें आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम, आशा भोंसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब, सो ये सारे ही इतने सुपर हिट सिंगर्स जिन्होंने ये सॉन्ग गाया. फिल्म का नाम CID दैट केम आउट इन 1956. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. अगले सॉन्ग की जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है ना, वो फिल्म का नाम है अलबेला. पुरानी वाली अलबेला है, जिसमें एक बहुत ही अलबेला किस्म के एक्टर हैं जिनका नाम भगवान दादा, एंड वन ऑफ द वेरी यूनिक एक्टर्स इन द इंडस्ट्री. ये सॉन्ग सुनते हैं, देन फिर थोड़ी सी उनके बारे में बात भी करेंगे. राइट नाउ हमारे जो लिसनर हैं वो इस सॉन्ग की वेट कर रहे हैं, सो चलिए.

म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म दैट केम आउट इन 1951. फिल्म का नाम अलबेला, और ये भगवान दादा जो इस फिल्म के एक्टर थे उनकी बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी ये, और इसमें गीता बाली भी नज़र आई थी. एंड फॉर दैट टाइम पीरियड दिस फिल्म गेन्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस. सी रामचंद्र जी का म्यूज़िक था, एंड ये जो फिल्म है उस टाइम की फिल्मों से थोड़ा हटकर थी. इसमें कॉमेडी थी, इसमें म्यूज़िक था बहुत अच्छा, और इसमें सोशल मैसेज भी था. एंड सॉन्ग्स डेफिनेटली ये ओ बेटा जी ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम. सो ये जो कॉम्बिनेशन दिखाया था ब्लैक एंड वाइट, कुछ हैप्पी कुछ सैड, कुछ सुख कभी दुख, तो ये जो सॉन्ग में गाया था बहुत लोगों को अच्छा लगा था, बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख होगा. भगवान दादा बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, एंड उन्होंने अपना करियर फिल्मों में तो काफ़ी बाद में जाके शुरू किया था. ये एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, वहाँ से हमेशा इनका शुरू से ही इंक्लिनेशन की थी कि फिल्मों में जाना है, कुछ करना है. ही वॉज ऑलवेज जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद द फिल्म्स, जिस तरह से फिल्में बनती थी और जिस तरह से वो बड़े पर्दे पर जो किरदार हैं नज़र आया करते थे. सो फाइनली देन उनको जब ब्रेक मिली तो उन्होंने साइलेंट फिल्म में काम किया. देन करते करते इतनी मेहनत की उन्होंने, फिर उनको जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल्स मिलने लग गए. ललिता पवार जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया था, एंड एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ था ललिता पवार एंड भगवान दादा के साथ. जब 1942 में फिल्म थी जंगे आज़ादी, उसकी जो है मूवी की शूटिंग चल रही थी, एंड उस टाइम क्योंकि भगवान दादा जो है न्यू थे थोड़े, तो इनको इतनी समझ नहीं थी एक्टिंग की, एंड थोड़े इनोसेंट एंड इतना नाइव के नहीं पता होता, नहीं ध्यान होता. तो एक सीन था जहाँ पर भगवान दादा ने ललिता पवार जी के कैरेक्टर को थप्पड़ लगाना होता है, तो वो बाय चांस बाय एक्सीडेंट इतना तेज़ वो लग गया कि फिर वहाँ से उनको जो है पैरालिसिस हो गया, फेशियल पैरालिसिस ललिता पवार जी को, एंड द होल ट्रीटमेंट टुक अबाउट 3 ईयर्स. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ललिता पवार जी का जो है द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट शी यूज टू प्ले हैड टू चेंज. उन्होंने फिल्मों को नहीं छोड़ा, उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा, बट उन्होंने जो है फिर उनके कैरेक्टर रोल्स शुरू हो गए, जहाँ पर वो कुछ जो है कभी विकेड मदर इन लॉ बन रही हैं, या विकेड कुछ उनका एंटेगनिज्म चल रहा है, किसी के अगेंस्ट कुछ प्लॉट चल रहा है, और या फिर वो बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट, कोई बहुत ही सख्त जो कैरेक्टर जो एक रोल होता है फैमिली में, वैसी कोई पर्सनालिटी का. सो शी वॉज वन ऑफ द एक्ट actors that had the longest spanning careers in the Hindi movie industry. But anyway, बात हम कर रहे थे भगवान दादा की, जिनकी हमने ये फिल्म अलबेला का सॉन्ग सुना, और हमारे एक लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की थी. सो थैंक यू सो मच, कीप द कॉल्स कमिंग इन. ये वाला सॉन्ग है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. वी विल बी गोइंग इन टू द ब्रेक शॉर्टली.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
14: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

स्वागत है आपका एक बार फिर से. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. संडे गपशप आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप, आपका स्वागत करती हूं.

1968 में आई थी ये फिल्म जिसका नाम पड़ोसन, और उसी फिल्म का हम ये बहुत स्वीट सा सॉन्ग सुन रहे थे। इसमें सायरा बानर्जी द यंग एक्ट्रेस, द गुड लुकिंग एक्ट्रेस, जिन्होंने अपना करियर जंगली फिल्म 1961 में शुरू किया था, एंड शी डिड गेट द नॉमिनेशन फॉर अ बेस्ट एक्ट्रेस। बट एट दैट टाइम इतना अच्छा और इतना हेल्दी कंपटीशन था कि इनकी इस फिल्म को जो है नॉमिनेशन ही रही। शी डिड नॉट विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, लेकिन इन्होंने जो है दिलों को जो जीता था वो तो बस पूछो ही मत। हर फेम शॉट अप विद द फिल्म, एंड देन आगे चलकर इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। पड़ोसन दैट केम आउट इन 1968. By then, she had gotten married to Dilip Kumar Sahab. 1966 में इनकी शादी हुई थी उनसे। फिल्मों में तो उन्होंने आना बंद कर दिया था। However, she did fulfill all of her commitments that she had made before getting married to him. उसके बाद तो देन ये जो है बस इन्होंने फिर फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। शी इज़ 81 ईयर्स ओल्ड, एंड इन्होंने जो है इंडस्ट्री में सारा पूरी लाइफ ही इन्होंने बॉम्बे के अराउंड और फिल्मों के अराउंड ही बिताई है। ऑफ कोर्स दिलीप कुमार साहब जो कि इतने जाने माने एक्टर रहे अपने टाइम पर, उनकी वाइफ एंड इनका वैसे भी जो है फिल्मों से ताल्लुक था शुरू से।

पड़ोसन ये जो फिल्म आई थी, ये कॉमेडी फिल्म थी, इसमें इन्होंने संजय सुनील दत्त साहब के साथ काम किया था। इट वाज अ म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म एंड जो है इसमें महमूद साहब भी थे और काफ़ी फनी एंड किशोर कुमार भी थे उसमें। सो ये सारे ही काफ़ी अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स थे एंड देन इन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी। तो देन फिर इन्होंने अपना जो है कमिटमेंट फुलफिल की। दिस फिल्म केम आउट इन 1968। वंडरफुल म्यूजिक बाय आरडी बर्मन। हमारी लिसनर हैं जो सुनना चाहती हैं ये वाली फिल्म का ये वाला सॉन्ग, और आई नो कि आप सब ने ये फिल्म भी देखी है। दिस सॉन्ग इज सो पॉपुलर कि हम सभी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है। अनदर वन बाय आरडी बर्मन साहब।

गुलजार साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म जो है सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि साउंड ऑफ म्यूजिक जो आई थी हॉलीवुड की फिल्म, कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर हुई। स्टोरी का कुछ जो है एक छोटा सा भी सीड कहीं से, किसी और फिल्म से, किसी और म्यूजिक से, किसी और स्टोरी ट्रू लाइफ इंसिडेंट से अगर एक छोटा सा सीड भी मिल जाए तो फिर हिंदी मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड में आके वो इतनी बड़ी 3 घंटे की फिल्म बन जाती है। ये जो है लाइक आई सेड, गुलजार साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, एंड किशोर कुमार इस गीत को गा रहे हैं जो कि फिल्माया गया जितेंद्र जी पर। परिचय, इस फिल्म का नाम आरडी बर्मन का म्यूजिक, एंड ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये हमारी लिसनर अजमीना जी ने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी। अब जो अगला सॉन्ग है, जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, वो भी हमारी एक बहुत रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की। अगेन हैट्रिक हो गई अब तो, अगेन ये वाला सॉन्ग भी किशोरदा की आवाज़ में। अ ट्रूली हार्ट टचिंग सॉन्ग। इम्तिहान फिल्म का

इस फिल्म में इम्तिहान क्या ना दो डुअल मीनिंग है. एक तो इम्तिहान होता है जो हम क्लासरूम में देते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देते हैं, और एक इम्तिहान होता है जो लाइफ हमारा लेती है, टेस्ट. तो ये जो है इस फिल्म में दोनों ही सेटिंग्स दिखाई हैं. इसमें जो एक्टर हैं विनोद खन्ना, वो जो है एक प्रोफेसर हैं एंड ही इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन. कॉलेज में कुछ जो है ब्रैश ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं, राउडी हैं थोड़े, वो उनको रिफॉर्म करने की कोशिश में लग जाते हैं. ही इज़ अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड वहाँ पर जब इनका इम्तिहान होता है कि टेस्ट ऑफ लाइफ की कौन कौन सी मुश्किलों से, हर्डल से ये पार करेंगे, एंड देन ही कम्स आउट टू बी सक्सेसफुल. सो विनोद खन्ना एंड तनुजा जी की ये फिल्म, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म के. इसमें जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक रहा एंड विनोद खन्ना प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर. सो कॉलेज रिलेटेड भी इम्तिहान एंड ऑल्सो द टेस्ट ऑफ लाइफ दैट

इसमें जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक रहा एंड विनोद खन्ना प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर. सो कॉलेज रिलेटेड भी इम्तिहान एंड ऑल्सो द टेस्ट ऑफ लाइफ दैट ही हैज़ टू गो थ्रू बाय ड्यूरिंग द फिल्म, एंड इसमें क्या क्या उनको ऑब्स्टिकल्स आती हैं एंड हाउ ही बिकम्स सक्सेसफुल. सो दैट इज़ वॉट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, थैंक यू. आप इतने अच्छे सॉन्ग्स जो हैं सुबह सुबह बताते हैं यहाँ पर और मैं उनको प्ले करती हूँ. एक जो अगली रिक्वेस्ट आई हुई है, वैसे तो उन्होंने ओरिजिनली एक दूसरा सॉन्ग मुझे बोला, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट. सो जब आप ये दूसरा उन्हीं की चॉइस का सॉन्ग सुनेंगे तो मैं वो उनकी जो चॉइस का फर्स्ट सॉन्ग है वो मैं ढूंढूंगी. अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारी जो लिसनर है वो मुझे फिर से कॉल कर सकती हैं एंड टेल मी इफ़ देर इज़ एनी अदर सॉन्ग दैट यू वुड लाइक टू लिसन टू. बट ये लीजिए, ये वाला तो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, हेमंत कुमार की आवाज़ है, राइट हेयर.

अच्छा ये वाले लिसनर जिन्होंने ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा था ये तो बैकअप था, जो उनकी ओरिजिनल जो उनका रियली जो मन था सॉन्ग सुनने का वो भी उन्होंने मुझे बताया था, एंड आई होप कि वो यही वाला हो, बिकॉज जब मैं टाइप करती हूँ ना ये हवा ये नदी का किनारा तो वो दूसरा जो है नूतन जी का वो भी आ जाता है. सो आई होप दैट दिस इज़ द वन दैट शी वॉन्ट हियर. दिस इज़ फ्रॉम घर संसार, आशा भोंसले जी की आवाज़. एंड आई थिंक इसमें जो मेल वॉइस है, अगर तो ये डुएट सॉन्ग है तो देन मन्ना डे की आवाज़ है. सो लेट्स लिसन टू दिस वन. एंड हमारी लिसनर हमें फिर से कॉल, मुझे यहाँ पर कॉल कर लीजिए इफ दिस इज़ नॉट द वन दैट यू वर लुकिंग फॉर. बड़ा स्वीट सा सॉन्ग है, घर संसार है फिल्म का नाम.

वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका. थैंक यू सो मच. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एक रूप, आपका स्वागत करती हूं. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और ये जो शो है मेरा संडे गपशप, ये आता है संडे को ही 7 बजे से लेकर 10 बजे तक. एक घंटा हो चुका है एंड 2 घंटे अभी पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ कॉल करके बता दीजिए. कीप द कॉल्स कमिंग इन. थैंक यू सो मच. आपके वैसे तो काफ़ी ओवरवेलमिंगली जो है आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ द सॉन्ग्स आर इन ऑफ योर चॉइस. सो जस्ट कीप द थिंग्स गोइंग. एंड जो है ये हफ्ते में एक दिन आता है शो 3 घंटे का, तो अभी मैं ये शो कर रही हूँ आपके लिए. सो प्लीज़ कीप द कॉल्स कमिंग इन. अगली जो रिक्वेस्ट है वो ये वाला सॉन्ग है. बड़ा अच्छा सॉन्ग है, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है. और ये जो एक्टर्स हैं इनकी जोड़ी बहुत पसंद की थी लोगों ने इस फिल्म में भी, प्रेम पुजारी में भी एंड गाइड में भी. दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड प्रेम पुजारी. ये वाला तो हो ही नहीं सकता. राइट हियर.

ये आगे चलकर इतनी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन गई थी, वहीदा रहमान जी की मैं बात कर रही हूँ. शी स्टार्टेड हर करियर विद द फिल्म कॉल्ड CID, और इनका जो डेब्यू जो फिल्म में जो कास्टिंग हुई थी इनकी ऑपोजिट, देव साहब, देवानंद साहब के ऑपोजिट इन्होंने अपना करियर शुरू किया था. आगे चलकर इतनी आइकॉनिक फिल्मों में फिल्में बनाई दोनों ने. ऑफ कोर्स दिस वन वाज प्रेम पुजारी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी. एंड देन काला बाजार, दैट केम आउट इन 1960, 16 साल उससे पहले आई थी वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म. एंड गाइड, जो तो बिल्कुल ही कल्ट क्लासिक फिल्म, इन दोनों को इकट्ठे हमने देखा था. एंड देन ऑफ कोर्स द आइकॉनिक वो द डेब्यू फिल्म विच वॉज CID. सो ये जो है दोनों एक्टर्स इकट्ठे काफ़ी नज़र आए थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में. एंड वेल नोन प्रोजेक्ट्स थे ये सारे ही. इनकी जो है ऑफ स्क्रीन जो केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हमने देखी थी. ऑफ स्क्रीन भी ये एक दूसरे के लिए इतना म्यूचुअली जो है रिस्पेक्ट थी, और इनकी जो एडमिरेशन थी एक दूसरे के काम के लिए वो भी बहुत काफ़ी शेयर्ड रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के काम के लिए. एंड इनकी जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स रहीं, जो इनकी प्रोफेशनली जो हमने इनकी कलेबरेशंस देखी, देवर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी आउटस्टैंडिंग. सो देव साहब एंड वहीदा रहमान जी इस फिल्म में इकट्ठे नज़र आए थे 1970 में. प्रेम पुजारी इज़ द नेम ऑफ द फिल्म. हमारे लिसनर जिन्होंने ये वाला सॉन्ग भी जिसकी रिक्वेस्ट की थी, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी का, ये वाला सॉन्ग सुनते हैं.

वेल होपफुली इतने अच्छे सॉन्ग सुनने के बाद आज का दिन आपका जो है फीका फीका ना हो. ये वाला सॉन्ग फिल्म अगेन, इसमें भी कोइंसिडेंटली देवानंद साहब और वहीदा रहमान का ही ये जो सॉन्ग है, वेल ये फिल्म उन्होंने ही इस फिल्म में भी काम किया था, बात एक रात की. एंड इसका जो एक दूसरा सॉन्ग है वो तो इतना पॉपुलर है, डेफिनेटली वो तो आपने सुना ही होगा, जिसके बोल हैं ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने. ये उसी फिल्म का सॉन्ग है. आई डिड नॉट नो कि इसमें भी देवानंद साहब एंड वहीदा जी इकट्ठे हैं. सो दिस ऑल्सो वॉज वन ऑफ द अदर फिल्म्स इन विच दे केम टुगेदर. और फिल्म का नाम बात एक रात की, जो आई थी 1962 में. मोहम्मद रफ़ी साहब ने और आशा जी ने ये सॉन्ग गाया, जिसके बोल आज का दिन भी फीका फीका तेरे गम में बीता बीता. सो इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं, आज का दिन तो आपका बिल्कुल भी फीका फीका नहीं होना चाहिए. 8:20 ऑलमोस्ट हो गए हैं स्टूडियो की क्लॉक में, 10 o'clock तक ये शो होता है. एंड आई जस्ट रियलाइज कि इतने सारे हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट्स भी करनी हैं. तो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद ओमर ख्वाजा, जो अटर्नी हैं हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल हैं, एंड ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट कॉम्पेंसेटेड फॉर वॉट यू डिज़र्व. अगर गॉड फॉरबिड आप किसी भी पर्सनल इंजरी में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप अटॉर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता कायम कीजिए, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए, एंड ही विल हेल्प यू थरली एंड ही विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस थरली. Because dealing with insurance companies can be stressful, and therefore you need an attorney that will make sure you are compensated and that will make sure that you are aware of what is going on with your case. And he doesn't charge you until you win the case. For a free consultation, you can call attorney Omar Khwaja at 469-300-5046, or you can visit his website, which is attorneyomar.com. अगला सॉन्ग जो रिक्वेस्टेड है वो हमारी लिसनर कहती हैं कि जवानी दीवानी फिल्म का ही है. एंड शी सेज कि इसी फिल्म का एक वो जो दूसरा सॉन्ग है, ढूंढता रहा तू कहाँ मैं कहाँ, जो वो पेड़ों के अराउंड गाते हैं, कि वो ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है. हाउएवर शी सेज दैट शी वांट्स टू लिसन टू दिस वन विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर. और इसके तो रीमेक्स भी बने हैं, 90s में इसके रीमेक्स बने थे, एंड हमने काफ़ी इस सॉन्ग को रिप्राइज्ड वर्जन में सुना हुआ है. सो टुडे वी आर गोना लिसन टू दिस वन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. फिल्म का नाम जवानी दीवानी.

फिल्म का नाम जवानी दीवानी है। एंड वाकई जो होती है ना जवानी, वो इतनी दीवानी होती है। ये फिल्म आई थी 1972 में। द यूथ विच हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, हाई स्पिरिटेडनेस, और बहुत जो ये एक फेज़ होता है लाइफ का, ये एक अलग ही फेज़ है, अनमैच्ड फेज़ है। इसके साथ कोई और मैच नहीं कर सकता किसी भी उम्र का इंसान। द यूथ इज़ जस्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड वो जो है उसी आई गेस कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बनी थी 1972 में। दिस वॉज अगेन ऑल्सो अनदर म्यूजिकल फिल्म। सॉन्ग्स इसके सारे ही बहुत अच्छे थे। आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक था, और ये वाला स्पेशली जो सॉन्ग है ये तो किशोरदा की आवाज़ में था, एंड रणधीर कपूर साहब पर फिल्माया गया। जया बच्चन भी हैं इस फिल्म में उनके साथ। म्यूजिकली पॉपुलर फिल्म रही जिसका नाम जवानी दीवानी। और जो दूसरा सॉन्ग था ना, जो मैं बोल रही थी कि वो पेड़ों के अराउंड ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे को, वो गाने के बोल हैं, जाने जा ढूंढता फिर रहा। ये वाला सामने कौन आया, अगेन अनदर पॉपुलर वन, एंड दिस फिल्म वॉज सच अ म्यूजिकली हिट फिल्म कि इस को जो है हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बना दिया था बिकॉज ऑफ द फिल्म, आई मीन बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। एक और सॉन्ग है जिसकी बहुत सारी सॉन्ग्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ब्रेक पे जाने से पहले एक और मैं सॉन्ग जो है प्ले कर सकती हूँ, टाइम है। ये वाला जो आप सॉन्ग सुन रहे थे जवानी दीवानी का, इसमें रणधीर कपूर हैं, और जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है वो उनकी वाइफ यानी कि बबीता जी की फिल्म का ये वाला सॉन्ग है।

0: बाहों में बाह डाले हजारों में ले चलूं दिल झूम जाए।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2770.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोल कीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं।
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं।
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं।
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
12: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरो हूं। यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
15: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जा खाते हैं।
14: What?
16: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
17: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: पता चला गया।
1: मुझे जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं ना, आप सॉन्ग्स तो मुझे बता ही रहे हो कि आपने कौन से सुने हैं, लेकिन जिस जनरल जो टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो यही है, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, आप कैसे अपने आप को कूल रख रही हैं, या हाउ आर यू मैनेजिंग दिस दैट। सो एनी वे द टॉपिक्स आर अराउंड द हीट। वेल, जो जुलाई 30th ऑनवर्ड्स जो टाइम शुरू होता है ना, उसको तो बस स्टेटिस्टिकली द हॉटेस्ट मंथ माना जाता है, एंड स्पेशली अराउंड द एंड ऑफ जुलाई। और इस को एंड ऑफ जुलाई का जो टाइम फ्रेम है उसको डॉग डेज ऑफ समर भी कहा जाता है। डॉग डेज ऑफ समर बेसिकली फ्रॉम जुलाई 3rd यानी कि बिगेनिंग ऑफ द मंथ टू अगस्त 11th। सो यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर इन, एंड हीट तो ऑफकोर्स स्टेटिस्टिकली बहुत होती है, जो कि इन द पास्ट ट्रेंड रहा है कि जुलाई इज़ कंसिडर्ड द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो जुलाई डेफिनेटली इज़ अ वार्म मंथ, एंड एज आई मैंशन द डॉग डेज ऑफ समर आर हियर, वी आर इन द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। सो अप टिल अगस्त 11th तो आई गेस मैं यही बोलूँगी, हैंग एंड टाइट, बस फाइंड वेज टू स्टे हाइड्रेटेड, फाइंड वेज टू कूल योर सेल्फ ऑफ, बिकॉज सल्ट्री वेदर है, एंड द स्कॉर्चिंग हीट विच इज़ एट इट्स पीक, सो जस्ट गॉट टू टेक केयर, एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ द मंथ कि हम कुछ भी बात कर लें, हीट या हॉट और गर्मी समर पर नेचुरली हमारी जो है बातें चली जाती हैं। अगला सॉन्ग जिसकी फरमाइश आई हुई है, राम तेरी गंगा मैली का ये वाला सॉन्ग।

41 इयर्स ओल्ड ये फिल्म और इसका म्यूजिक कितना एवरग्रीन. राम तेरी गंगा मैली जो आई थी 1985 में अराउंड इन द मिडल ऑफ अगस्त, तो 1985 एंड 2026, 41 इयर्स एंड राज कपूर साहब की डायरेक्टोरियल फिल्म ये. एंड इसके बाद तो देन बस फिर उन्होंने जो है आई गेस काम कम कर दिया था विद हिज एज. एंड ये इसमें फिल्म में जो है मंदाकिनी थी एंड उनके बेटे राज कपूर साहब के बेटे राजीव कपूर. म्यूजिकली दिस फिल्म वॉज वेरी सक्सेसफुल. रविंद्र जैन जी का म्यूजिक था. उन्हीं का कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने गए हुए थे राज कपूर साहब एंड जब उन्होंने रविंद्र जैन साहब की आवाज़ में एक गीत सुना एंड वहाँ से उनको इस फिल्म का आइडिया आ गया. थोड़ी देर पहले मैंने अपने शो में इसमें बात की थी कि कहीं से बस एक आइडिया मिल जाए, कोई एक छोटा सा सीड मिल जाता है, चाहे वो रियल लाइफ इंसिडेंट हो, चाहे वो कोई स्टोरी ऑलरेडी जो लिखी हो, पढ़ी हो, कोई नॉवल हो, या कोई हमने कोई नॉट हमने बट डायरेक्टर्स ने कोई न्यूज़ का कुछ पीस पढ़ लिया हो, तो वहाँ से उनको बस यूजुअली आइडिया आ जाता है और वो एक पूरी 3 घंटे की फिल्म बना देते हैं. सिमिलरली इस फिल्म की भी कंसेप्शन जो है कुछ ऐसी ही थी. रविंद्र जैन साहब की आवाज़ सुनी, उन्होंने एक गीत गाया एंड राज कपूर साहब को लगा कि अरे ये जो गा रहे हैं इसी में एक पूरी स्टोरी मैं बना सकता हूँ मूवी की. एंड दैट ब्रॉट टू अस अ फिल्म कॉल्ड राम तेरी गंगा मैली. सो थैंक यू हमारी श्रोता जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. पी एम जे ज्यूल्स द वेट फॉर डालस इज ओवर. पी एम जे ज्यूल्स इज नाउ इन फ्रिस्को. दे ब्रिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. You can explore stunning gold, diamond and bridal collections for every celebration and milestone. They are proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamaneni. PMJ is a name trusted by generations. You can visit PMJ Jewels located in Frisco on Main Street and you can discover jewelry that may be able to tell your story. Hamari listener, ek aur jinhone is song ki request ki.

चिराग फिल्म का ये सॉन्ग, मदन मोहन जी का म्यूजिक, आशा पारेख एंड सुनील दत्त साहब इस फिल्म में और वो इस गीत में, आई एम श्योर फिल्म में भी, एंड इस गीत में उनके साथ मुकरी जी भी बैठे हुए हैं जो कि बड़े पॉपुलर एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कितना सारा कॉमेडी रोल किया था एंड ही वॉज़ अ पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट मुकरी साहब. एंड ये फिल्म जिसका नाम चिराग, अभी जो है ना टाइम, आज वेल आज की डेट है जुलाई 26th एंड जुलाई 31st. वैसे तो जो है ना 31st इज़ अ फ्राइडे एंड दैट, क्योंकि मेरा तो शो संडे को आता है, तो जो नेक्स्ट संडे फिर जब मैं शो करूँगी तो जुलाई 31st वुड हैव ऑलरेडी पास्ड. August 2nd होगा उस दिन. Why I am bringing up July 31st? Not only because it's the last day of the month, but also एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही talented and बहुत एक अच्छी सभी की पसंदीदा actress उनका जन्मदिन होता है. So I'm just going to play this song and I know you will know who I am talking about. अगर आपके जहन में कोई भी उनकी मूवी का सॉन्ग है, विच आर गोइंग टू बी न्यूमरस वंडरफुल आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स, तो यू आर वेलकम टू गिव मी अ कॉल 972-235-5555. जस्ट सो यू नो, FYI 9 o'clock के बाद मैं गिव अवे भी करूँगी.

Mumtaz, the wonderful actress, born on July 31st, 1947. बस उनका बर्थडे आने वाला है, तो इसीलिए ये वाले सॉन्ग, ये वाला जो थोड़ा सा सेगमेंट है 10-12 मिनट का, आई जस्ट थॉट वी वुड प्ले हर सॉन्ग, वी वुड लिसन टू सम ऑफ हर सॉन्ग्स. इफ यू वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग दैट इज पिक्चराइज्ड ऑन हर, गिव मी अ कॉल.

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका स्वागत करती हूँ. थैंक यू सो मच आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके टाइम के लिए, आपके इतने अच्छे अच्छे जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स हैं उनके लिए. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज़ to be able to spend time with each other through listening through the medium which is here a wonderful platform which is 104.9 FM Fun Asia Radio. Hum aapke saath aapki cars mein hote hain and hopefully ki ghar mein bhi aapke saath hum jo hai aap jab apne household chores kar rahe hote ho to kahin na kahin aap hame yaad karte hain aur radio par hamari awaaz sunte hain. So us ke liye thank you so much. मैं अभी 9:07 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में. 10:00 तक ये शो आता है और जब ब्रेक के बाद 9:00 की ब्रेक के बाद मैं आती हूँ तो एक कोई सॉन्ग सुनाती हूँ एंड देन उसके बाद गिव अवे होता है. सो आई एम गोना फॉलो द सिमिलर स्टाइल एंड देन अभी जो है बस एक ऐसे सॉन्ग है, रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, हैज़ नथिंग टू डू विद गिव अवे. ये वाला सॉन्ग सुनते हैं एंड देन उसके बाद जो है गिव अवे का सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगी एंड देन प्लीज़ देन कीप द कॉल्स कमिंग इन. ऑल्सो एज वेल आप सबका रिस्पॉन्स इज़ व्हाट इज़ नीडेड एंड वेल राइट नाउ दिस इज़ द सॉन्ग दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड.

फिल्म का नाम सरबजीत, और ये जो रोल प्ले किया था रणदीप हुडा ने, रोल प्ले किया था एंड उनकी सिस्टर दलबीर कौर का रोल प्ले किया था ऐश्वर्या राय ने। एंड ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। इट वाज ऑफ कोर्स बायोग्राफिकल बायोपिक फिल्म थी 2016 में, उसी का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे। अब जो है टाइम हो रहा है गिव अवे का, तो गिव अवे के लिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि किन की तरफ से है गिव अवे। यस, आपको याद होगा लास्ट वीक भी सिमिलर गिव अवे ही, मतलब सेम ही था। इफ़ यू वर ट्यून्ड इन लास्ट वीक, तो हमने बात की थी चंडीगढ़ की, बिकॉज द गिव अवे इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, विच इज़ अ रेस्टोरेंट हियर इन एलन, और ये जो है मैकडर्मट पे लोकेटेड है। स्टूडियो हमारा मैकिनी में है और ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी पास है, इट इज़ इन द विसिनिटी। सो अगर आपको पता है स्टूडियो कहाँ है तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से चंडीगढ़ बाइट्स भी ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ ऑन McDermott in Allen. So here is your chance to win $10 off on a billing of $50 dine-in only. Enjoy the special thali from Monday through Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. तो ये आप अगर डाइन इन करेंगे, आप ये गिव अवे के जो मेन जो एक क्लॉज है वो यही है कि आप डाइन इन करें एंड उसमें $50 का बिल जो आता है उसमें फिर आपको $10 ऑफ मिलेंगे। यू कैन एन्जॉय द स्पेशल थाली मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज दैट आर रोटेटिंग एवरी डे, डिफरेंट डिशेज, एंड दिस इज़ फॉर लंच ओनली। दे आर लोकेटेड इन एलन। यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज़ chandigarhbites.com. आप जस्ट टू बी फेयर एंड इक्वल टू एवरीबडी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी वन अ गिव अवे इन द लास्ट 1 month, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग एट द वेरी बिगिनिंग विच इज़ राइट नाउ। आप बाद में ज़रूर कॉल कर लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट द गिव अवे दैट आई एम मैंशनिंग हेयर। कुछ भी आपने शेयर करना हो तो ज़रूर आप ऑन एयर आकर अपना नाम बताएं एंड देन लेट अस नो। बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये गिव अवे ऑलरेडी जीत चुके हैं 1 महीने में कोई भी, तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए बिफोर यू मेक दिस फ़ोन कॉल। वी वॉन्ट टू गिव द न्यू लिसनर्स और द पीपल दैट हैव नॉट वन अ फेयर एंड इक्वल चांस। सो मैं ये सॉन्ग प्ले करूँगी एंड देन आप मुझे मूवी का नाम बता दीजिए और उसमें कौन से एक्टर्स हैं उनका नाम बता दीजिए एंड हु हैज़ संग द सॉन्ग। गूगल मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू आई गेस थिंक अबाउट इट। आवाज़ सिंगर की तो शायद आप राइट अवे पहचान जाएंगे एंड देन आपको अगर मूवी का आइडिया है तो ज़रूर बताइए। आई एम आस्किंग यू द मूवी नेम, द नेम ऑफ द एक्टर्स एंड द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग।

Tell me the name of the film, the name of the actors. इसमें कुछ न्यू एक्टर्स हैं, कुछ वेल नोन वेटरन एक्टर्स हैं. तो आप जितने ज़्यादा मुझे नाम बता देंगे, दैट्स गुड. एंड ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द सिंगर हु हैज़ संग दिस सॉन्ग. सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस लिटल पीस अगेन. 972-235-5555 इज़ द नंबर, एंड यू कैन गिव मी अ कॉल बैक. यू मे बी द विनर फॉर टुडेज़ गिव अवे.

0: लेट्स हियर फ्रॉम दिस कॉलर. गुड मॉर्निंग. पहले तो आप अपना नाम बताइए. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
0: मैं ठीक हूँ बिल्कुल. आप अपना नाम बता दीजिए.
1: टोनी बोल रहा हूँ मैं.
0: ओ टोनी जी, ठीक है. तो आपने गिव अवे के लिए कॉल किया या रिक्वेस्ट करने के लिए कोई सॉन्ग?
1: मैंने रिक्वेस्ट के लिए कॉल किया.
0: ओके ओके,
1: रेडियो शो किया रिक्वेस्ट.
0: ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू ऑफ एयर. या सो जस्ट या स्टे हियर. अरे आपको तो अभी तक तो पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है और इसमें एक्टर्स कौन से हैं. एटलीस्ट हु इज द सिंगर. सिंगर तो बहुत ही डिस्टिंक्टिव वॉइस है अभी तक तो. राइट अवे मेरे तो ये फेवरेट सिंगर हैं. सो दैट इज व्हाई आई थॉट आई विल प्ले दिस सॉन्ग. अच्छा चलो एक क्लू दे देती हूँ. म्यूजिक से आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत रीसेंट फिल्म का म्यूजिक है. सो आपको एज भी मैंने बता दी कि ये रीसेंट फिल्म है. सो लेट मी नो द नेम द फिल्म द एक्टर्स एंड द सिंगर फॉर दिस सॉन्ग.

0: गुड मॉर्निंग, योर लाइफ ऑन एयर. पहले तो आप अपना नाम बताइए.
1: माय नेम इज भरत.
0: भरत, ठीक है. सो आपने ये गिव अवे पहले तो नहीं जीता, राइट भरत?
1: व्हाट इज द गिव अवे? आई डोंट नो दैट. आई
0: एम सॉरी, से दैट अगेन.
1: आई डोंट नो व्हाट टू गिव अवे. आई जस्ट केम इन द मिडल ऑफ द सेशन.
0: ओके, वेल, सो द गिव अवे इज दिस $10 ऑफ ऑन $50 गिव डाइन इन एट चंडीगढ़ बाइट्स.
1: No, I have not won that giveaway though.
0: Okay. All right. So tell me the name of the song, well, the name of the film and the actors and the singer.
1: I am not sure on the movie. Maybe it's the new movie of Kapil Sharma, Kis Kis Ko Pyar Karun Tu, I guess.
0: Achha, nahi, wo wali film nahi hai, but you're quite close. So I'm going to have to give another caller another chance. So thank you so much for coming on air. Ji, thank you, Bharat ji. सो भरत जी ने कुछ पार्टली आंसर दे दिया है. सो दैट वॉज अ गुड क्लू. इसके बियॉन्ड मैं नहीं कुछ बोलूंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू रिज्यूम द सॉन्ग. लाइक आई सेड, दिस इज़ वन ऑफ द रीसेंट फिल्म्स. सिंगर का नाम तो बहुत ही पेक्यूलियर है, सिंगर की आवाज़ तो बहुत पेक्यूलियर है, तो आपको पता चल जाएगा राइट अवे. सो लेट मी नो द नेम ऑफ द मूवी, द एक्टर्स एंड द नेम ऑफ द सिंगर. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. कपिल शर्मा का बहुत बड़ा हिंट दे दिया भरत साहब ने.

0: Good morning, you're live on air.
1: Hi, my name is Shweta.
0: Hi Shweta, good morning. आपने गिव अवे के लिए कॉल किया है.
1: Yes.
0: All right, so tell me, what do you know about the song? I mean the actors, the name, the film and the singer.
1: I think it's Sukhvinder Singh is the singer.
0: कौन फिर से बताइए.
1: Sukhvinder Singh.
0: सुखविंदर सिंह. हाँ जी, यस दैट इज राइट, द सिंगर.
1: I'm guessing on this one, but is it O Romeo with Shahid Kapoor and Tripti Dimri?
0: No. Thank you so
1: No?
0: much. I'll
1: Okay.
0: move on. जी,
1: No worries.
0: थैंक यू
1: Okay,
0: श्वेता. बाय
1: thank you.
0: बाय. गुड मॉर्निंग, यू लाइव ऑन एयर. आप पहले अपना नाम बताइए एंड आर यू कॉलिंग फॉर द गिव अवे.
1: Yes,
0: ओके
1: it
0: अजमीना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: Shaker.
0: अच्छा ठीक है, चलिए अब आप बताइए. सुखविंदर सिंह तो हमें पिछले कॉलर ने बता दिया, सो आई थिंक यू प्रॉब्ली
1: माय दादी की शादी
0: पूछ रही हैं या बता रही हैं. आर यू आस्किंग मी
1: हम
0: अ
1: चलेंगे.
0: क्वेश्चन?
1: इज दैट द वन? आई जस्ट गेस्ड इट. आई थिंक दैट इज वाज द वन आई थॉट ऑफ. सो इट्स दादी की शादी.
0: हाउ डिड यू गेस इट? क्या क्लू मिला आपको?
1: यू जस्ट सेड दैट यू नो द एक्टर्स नेम एंड देन इट वाज समथिंग न्यू. इट्स अ न्यू मूवी सो आई जस्ट थॉट इट
0: यस
1: वुड बी दैट वन.
0: इट इज. हाँ जी, सो और क्या पता है इस मूवी के बारे में? दादी की शादी.
1: नीतू सिंह इज इन देयर.
0: हाँ
1: नीतू
0: एंड
1: सिंह डॉटर इज इन देयर.
0: हाँ जी यस. और सिंगर का नाम
1: इज इट राइट?
0: आपने मुझे सिंगर का नाम
1: सुखविंदर सिंह राइट?
0: सुखविंदर सिंह. सो दिस इज राइट. आपने मेरे को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा एंड क्वेश्चन पूछते पूछते आपने मुझे सारे आंसर्स दे दिए. ये अच्छा तरीका है, गुड
1: आई गेस दैट्स
0: स्ट्रेटजी.
1: हाउ द टीचर वर्क्स. द टीचर
0: आई
1: ऑलवेज
0: नो
1: आस्क क्वेश्चंस एंड यू नो यू पुट मी इन दैट
0: आई नो
1: सिचुएशन.
0: या सी वो जो हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है ना वो आ जाती है बाहर. नाउ सिंस यू आर ए टीचर तो आपने मुझे बिल्कुल मेरे मुझे ही पूछते पूछते आपने सारे आंसर दे दिया. चलिए गुड.
1: That's
0: ऑल राइट, सो टेल अस योर नेम
1: correct.
0: ऑन एयर अगेन एंड देन आई विल स्पीक टू यू ऑफ एयर.
1: My name is Azmina.
0: अजमीना, ठीक है, चलिए. आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है. दादी की शादी विच रिसेंटली केम आउट इन मे, और ये अच्छी फिल्म है. अगर नहीं देखी तो आई वुड से नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. अच्छी फिल्म है, देख लीजिए. नो वायलेंस. कपिल शर्मा की बड़ी सिंपल सी फैमिली टाइप फिल्म है. नीतू कपूर हैं इसमें एंड देन ऑफकोर्स सुखविंदर सिंह की बहुत अच्छी आवाज़. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग. ये वाला मैं प्ले करती हूँ एंड इट इज़ फ्रॉम अ फिल्म दैट फीचर्स ऐश्वर्या राय एंड शाहरुख खान. एंड इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू स्पीक टू अजमीना जी.

Azmina is the winner for today's giveaway from Chandigarh Bites. Congratulations, Azmina. Yes, you did give the right answer. And Dadi Ki Shaadi film ka naam, Kapil Sharma ki film, Neetu Kapoor and usme unki beti Riddhima Kapoor bhi, Riddhima Kapoor Sahani. Sukhvinder Singh ki awaaz ka hum wo song sun rahe the. Achha, usse pehle maine song lagaya tha, film ka naam tha Sarabjit, jisme Aishwarya Rai jo hai Randeep Hooda ki sister banti hain. Ye वाला जो सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ इसमें ऐश्वर्या राय शाहरुख खान की सिस्टर का रोल प्ले करती हैं, और जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई है ना, उसमें जीनत अमान जो है देवानंद साहब की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं. सो हियर यू गो. व्हाट अ कोइंसिडेंस. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. आई वाज जस्ट गोइंग देयर.

0: देखते देखते अगस्त आ गया, और जब अगस्त आ जाता है तो फिर इंडिपेंडेंस डे, और इस साल IIT आनंद बाजार 2026 आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया अगस्त 15th. द सेलिब्रेशन इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज कम्प्लीटली इंडोर्स एंड फ्री फॉर एवरी वन. यू कैन एन्जॉय द ऑथेंटिक इंडियन फूड. Authentic Indian food vendors will be there, grand parade, cultural performances, the live music, shopping, and an incredible drone show with fireworks finale. Bring your family, bring your friends, be a part of the North Texas IIT Anand Bazaar, August 15th.
1: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
2: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
3: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
10: चाट से मालपुआ रबरी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी.
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
9: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
9: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स, लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

Tom Hanks was featuring in this film called That Thing You Do that came out in 1996. This film was his directorial debut as well. Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fanesia Radio. This is your host, RJ Akrop, welcoming you all once again. 9:36 is the time in the studio clock, और इसका ये मतलब है कि about 24 minutes बचे हुए हैं 10 o'clock होने में, and then तब तक ये show जो है मुझे wrap up करना होता है. Thank you so much for your participation. Thank you so much for staying tuned in to my show. 7 to 10 is the time for this show. 3 घंटे ये show Sunday को आता है. 3 घंटे के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ, आपसे इस शो के ज़रिए मिलती हूँ, बातें होती हैं, आपके चॉइस के सॉन्ग्स यहाँ पर प्ले होते हैं. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. प्रभु देवा इज़ कमिंग लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलीब, सोनल भदौरिया, एलेक्जेंडर नोअल, हरिनी नीला कंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना या मेघना सानवे फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट सैटरडे अगस्त 1st एट द टेक्सास ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. बुक योर टिकट्स नाउ. यू कैन कॉल 248-233-3828. मीडिया पार्टनर इज फन एशिया नेटवर्क एंड ये जो है आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ. This is going to take place on August 1st. मैंने तो अभी देखा है कि इसके लिए भी एक गिव अवे है. सो जस्ट कॉल मी एंड लेट मी नो प्रभु देवा का कोई भी सॉन्ग आप मुझे बता दीजिए एंड यू विल विन वन टिकट गिव अवे. और एक ही विनर है. आई जस्ट एज आई वाज रीडिंग दिस लाइव अनाउंसमेंट मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक गिव अवे भी देना है. सो हियर यू गो. दिस इज सच अ गोल्डन चांस. इफ यू आर ट्यून्ड इन राइट नाउ गिव मी अ कॉल बैक. गिव मी वन नेम one song in which Prabhu Deva has been featured. Hindi song hona chahiye. I know South Indian songs, South Indian languages mein to unhone bahut sara kaam kiya hai. So aap mujhe ek song bata dijiye jisme Prabhu Deva jo hain wo featured hain. So I'm going to take your call off air. Right now I'm just going to play this song. Ye hai Rani Mukherjee ki film ka.

0: ऑलराइट, सो आप के फोन कॉल्स आने लग गए हैं एंड लेट्स हियर फ्रॉम दिस कॉलर. गुड मॉर्निंग, योर लाइव ऑन एयर. आप मुझे गिव अवे के लिए कॉल कर रहे हैं, प्रभु देवा के इवेंट के लिए.
1: यस, गुड मॉर्निंग.
0: ऑलराइट, टेल अस योर नेम. आप पहले अपना नाम बताइए एंड देन गिव मी वन सॉन्ग दैट फीचर्स प्रभु देवा. हिंदी सॉन्ग हो तो बेटर है.
1: ओके, माय नेम इज इंदु.
0: ऑलराइट,
1: और प्रभु देवा के वैसे तो बहुत सारे गाने हैं. आई लव के सरा सरा
0: पुकार, जो पुकार मूवी
1: अलॉट,
0: का है.
1: या
0: ठीक
1: पुकार
0: है,
1: मूवी.
0: चलिए.
1: यस.
0: ऑलराइट, दिस वाज रियली ऑन द स्पॉट. ये तो जब मैं लाइव अनाउंसमेंट पढ़ रही थी, दैट्स व्हेन आई सॉ कि अरे इसका भी गिव अवे है. बट चलिए, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग अलोंग विद माय आई गेस स्पॉन्टेनियरी. और ये जो है आपको गिव अवे मिलता है. लेट मी टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर एंड देन आई विल लेट यू नो हाउ टू क्लेम दिस गिव अवे.
1: Awesome.
0: All right, ठीक है. थैंक यू सो
1: Thank you.
0: मच एंड आई एम जस्ट स्टे हियर. आई एम गोना स्पीक टू यू ऑफ एयर. ये वाला सॉन्ग हम रिज्यूम करेंगे. दिल बोले हड़प्पा.

मीका सिंह की आवाज मैंने पहचान ली इस सॉन्ग में. आई थिंक मीका सिंह है और उनके साथ सुनिधि चौहान है. फिल्म का नाम दिल बोले हड़प्पा. इसमें जो है ना, रानी मुखर्जी अपने ही एक हाइपोथेटिकल ब्रदर की सिस्टर बनी होती हैं, बिकॉज शी इज़ द वन दैट प्लेज द रोल ऑफ मेल कैरेक्टर एज वेल एज फीमेल. तो ऑफ कोर्स वो अपना कैरेक्टर तो प्ले ही कर रही होती हैं वीरा का, और उनके जो हाइपोथेटिकल ब्रदर हैं वीर प्रताप सिंह. एंड द रीज़न शी डिसगाइज़ेस लाइक अ मेल इज़ बिकॉज शी वांट्स टू प्ले फॉर द क्रिकेट टीम. और क्रिकेट टीम सिर्फ मेन की है, वुमेन की नहीं है. शी इज़ एन आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट. सो एनीवे, दिल बोले हड़प्पा का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. प्रभु देवा के बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स हैं, उनमें से एक जो हमारी विनर है इंदु, उन्होंने तो हमें केसरा के बारे में मेंशन कर ही दिया. हमारे एक और लिसनर हैं, आई फॉरगॉट टू आस्क हिज नेम बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू हिम ऑफ एयर एंड फ़ोन कॉल्स आ रहे थे एंड आई वॉज अटेंडिंग अदर कॉल्स टू. सो उन्होंने भी बोला उर्वशी अ सॉन्ग विच फीचर्स प्रभु देवा. सो आई हैव लाइंड इट अप, वो मैं प्ले करती हूँ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में आपको मैं पहले बता दूँ. दे स्पेंड 30 मिनट्स विद यू एज अ पेशेंट एंड विद देम बीइंग योर प्राइमरी हेल्थ केयर. सो अंडरस्टैंडिंग देम एंड देम अंडरस्टैंडिंग यू इज इम्पॉर्टेंट. एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर देयर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज अवेलेबल. 30 मिनट्स का एनुअल फिजिकल, और फिर आप उसमें अपने जो आपके और भी इश्यूज हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप वो भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं. दे डू एनुअल फिजिकल्स, दे डू हैव एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डिफिशेंसी टेस्टिंग एंड मोर आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. यू कैन स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे 214-666-6259 or you can I guess just visit their website. Also they are called Passion Health Primary Care. Urvashi, ye wala jo song hai ye Prabhu Deva hi hai is song mein. The music is by A.R. Rahman.

प्रभु देवा का जो फाउंडेशन इनकी जो बनी हुई है ना, वो क्लासिकली ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर उन्होंने सीखा है, एंड ही हिज फाउंडेशन इज़ द क्लासिकल डांसिंग. तो उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है. ऑफकोर्स उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल्स भी सीखे हुए हैं. उनकी मेनली जो उनकी इंस्पिरेशन है वो उनके फादर से आती है. उनके फादर साउथ इंडियन फिल्मों के कोरियोग्राफर रहे हैं, एंड क्योंकि उनके डीएनए में है डांसिंग, और फिर ऑफकोर्स उनकी फाउंडेशन क्लासिकल डांसिंग से रही है, तो फिर ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं बन गए प्रभु देवा, जो कि माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया उनको एक कोलोकली ये एक नाम दिया हुआ है. आई डोंट नो उनकी बॉडी में बोन्स

डांसिंग से रही है, तो फिर ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं बन गए प्रभु देवा, जो कि माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया उनको एक कोलोकली ये एक नाम दिया हुआ है। आई डोंट नो उनकी बॉडी में बोन्स हैं नहीं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ही इज़ सो सुपर फ्लेक्सिबल। वो कोई भी मूव होती है, कोई भी डांस का एक कुछ भी एंटिक्स करने होते हैं, ही इज़ सच अ वंडरफुल आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल डांसर इन इंडिया। तो जी हाँ, वो आ रहे हैं August 1st, सो ट्राई एंड गेट योर टिकट्स सो यू कैन वॉच दिस पर्सन डांसिंग इन लाइव। प्रभु देवा जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, एंड वी आर लकी टू बी इन डैलस, एंड डैलस इज होस्टिंग हिम ऑन August 1st। अभी जो मैं सॉन्ग लगाऊंगी प्रभु देवा का तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी उनका जो है गिव अवे ख़त्म हो गया है। उनके गिव अवे की विनर भी हमें मिल गई हैं, एंड ऑल्सो अब जो मैं सॉन्ग लगाऊंगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग। फिल्म का नाम है कोई मिल गया, जादू वाली जो फिल्म थी। ऋतिक रोशन हिमसेल्फ इज सच अ ग्रेट डांसर, उन पर ये सॉन्ग है और उनके साथ हैं प्रीति जिंटा। ये वाला सॉन्ग एंजॉय कीजिए।

किरने नहीं, उम्मीदें नहीं, जोश भी नया सा, और इन्हीं अच्छी सोच, इसी अच्छी सोच के साथ आप अपना नया दिन शुरू कीजिए। वैसे मेरा दिन तो 7 बजे शुरू हो जाता है संडे को। बस अभी आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले संडे बिल्कुल यहीं पर 7 बजे से 10 बजे तक के शो में लेकर आती हूँ संडे गपशप। दिस इज आरजे एकरूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय बाय।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
8: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: जीनी हुकम मेरी आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
11: ये तारा वो तारा हर तारा.
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
13: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
14: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
15: तारीख पर तारीख.
16: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑब्री.
14: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
17: इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर। मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। सुनेंगे कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने और साथ ही शेयर करूंगी कुछ अनोखी अनसुनी मजेदार बातें, यानी कि कुछ मजेदार फन फैक्ट्स करूंगी आपके साथ शेयर। अगर हैं आपके पास कुछ ऐसे फन फैक्ट्स, देन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। A big shout out to Ek Roop that she brings to us every Sunday morning. Such a wonderful show, full of lovely melodies and information. So thank you so much, Ek Roop, once again. Coming back to Just Chill. So yes, the studio number once again is 972-235-5555.

वेल दैट वाज पिया से नैना लड़ाई रे, एंड मेरा कहना है कि कहीं कोई एक्सीडेंट स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाए तो आपको लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपको नाम एक याद रखना है एंड दैट इज अटर्नी ओमार ख्वाजा। क्योंकि कई बार होता है कि चाहते ना चाहते आप कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं, कोई फॉल इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से भी डील नहीं करना है एंड यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट अटर्नी ओमार ख्वाजा। क्योंकि ना केवल ही आपका केस लड़ेंगे बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो स्ट्रेस है वो भी वही डील करेंगे एंड यू डू नॉट पे अंटिल यू विन द केस। तो आप एक फ्री कंसल्टेशन के लिए उन्हें कॉल करें और समझें कि कैसे क्या करना है। द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com। And the next one is a song request. It's taken from the movie Dhurandhar.

चलो, जख्म से ना मुझे एक बात याद आ रही है कि कई बार कहते हैं ना कि जो दर्द है, तकलीफ है, वो तुम्हारे दिमाग में है. पता है, योर ब्रेन इट सेल्फ डजेंट हैव पेन रिसेप्टर्स. ये जो टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग इट होते हैं ना, दे हैव दोज रिसेप्टर्स. सो द ब्रेन टिश्यू इट सेल्फ डज नॉट फील एनी पेन. तो अगली बार कोई बोले ना कि ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तो भाई ऐसा नहीं है. उनको समझाना कि भाई ब्रेन इट सेल्फ डज नॉट हैव पेन रिसेप्टर्स, इट्स द टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग इट विच डू.

taken from the movie Monica, oh my darling. ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है. अगर कोई आपसे कहे ना कि ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली इफ़ इट्स रिलेटेड टू बाइंग अ होम, राइट? तो मैं आपको बताऊँ दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज जो हैज़ हेल्प्ड lots of families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and a smooth stress-free process. क्योंकि कई बार होता है जब आप पहली बार घर ले रहे होते हैं, यू आर स्ट्रेस्ड कि भाई पेपर वर्क ठीक से हुआ कि नहीं, यू नो लोन कहाँ से मिलेगा, बहुत से क्वेश्चन होते हैं दिमाग में. दे आर लाइसेंसड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड इनकी जो एक्सपीरियंस टीम है इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड टू योर नीड्स. क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग होती हैं, अलग यू नो पॉसिबिलिटीज होती हैं. सो दे विल टेलर एज पर योर नीड्स. Well, whether you're buying your first home, या फिर you're upgrading या refinancing, start your home ownership journey with confidence today. आप Dream Home Mortgage को call करें. The number is 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Phonesia 104.9 FM.
15: You are listening to 104.9 FM Phonesia Radio, bringing the community together. This is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। वेल, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। एंड संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट, तो मैं करती हूँ आपके साथ कुछ अनोखी, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग बातें शेयर, राइट? सो अगर मैं आपको बताऊँ कि जो ये काउज होती है ना, they have preferred buddies. You know, they become very stressed when separated from familiar companions. So, जैसे हम लोगों को होता है ना stress कि कहीं कहीं अनजान जगह पहुंच जाएं, किसी को नहीं जानते, और we get stressed out. Similarly, cows, you know, they can, you know, they need their companions. So they get stressed if they don't have their preferred buddies with them. They need somebody to give them some साथ.

मैं भी आपका साथ दूंगी दोपहर के 12 बजे तक। जी हाँ, मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल। और आज संडे को जस्ट चिल में होता है फन फैक्ट सेगमेंट, राइट? तो आपको बताऊँ कि शैम्पू जो है, जो हम शैम्पू करते हैं, राइट, इट हैज़ एन इंडियन कनेक्शन। द इंग्लिश वर्ड शैम्पू ट्रेसिस बैक टू द हिंदी उर्दू वर्ड चंपू, चंपी भी वहीं से आया है। सो एसोसिएटेड विद प्रेसिंग और मसाजिंग यू नो योर हेड। सो हर्बल हेयर एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट्स हैड लॉन्ग ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो योर शैम्पू बॉटल हैज़ अ लिंग्विस्टिक देसी कनेक्शन, है ना? इट्स सो आप कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट वॉज एक्चुअली मेड इन इंडिया।

Well, that was Made in India by Alisha Chinoy. And yes, अगर आप इंडिया से हैं तो जानते हैं कि 15 अगस्त हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? सो दिस अगस्त 15th, डोंट जस्ट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेट इट द इंडियन वे. जी हाँ, ज्वाइन IANT's आनंद बाजार 2026 एट द कमर्सिया सेंटर फ्रिस्को. Saturday from 2 PM onwards, you can experience a grand Independence Day parade. You know, बच्चों को भी ले जाइए, authentic Indian food. मैं तो कहती हूँ कि अपने colleagues जो India के बारे में पूछते रहते हैं right, कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या होता है, उनको भी ले जाएं, because they can experience about authentic Indian food, colorful cultural performances, live music and shopping, family fun and an unforgettable celebration of Indian Independence. And the best part, it's completely indoors, so garmi nahi lagegi, and free for everyone. So celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 is going to be on Saturday, August 15th, 2 PM onwards at Commercia Center, Frisco.

वीकेंड है, राइट, संडे हो गया है. एंड होता है ना कि ये कुछ चटपटा भी खाने का मन है, कुछ और भी खाने का मन है. तो मैं आपको पेज 3 इटरी के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज यू नो डैलस हैज़ गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121. पेज 3 इटरी में आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा विद मॉडर्न फ्लेयर. चाहे आपको कबाब खाने का मन है, या चाट, या कोई फ्यूजन बाइट्स, या मॉकटेल्स, राइट? सो वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच, मैं तो कहती हूँ चाय एंड डिनर. किसी भी टाइम आप जाएं, इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर डेट्स, फॉर जस्ट कैचिंग अप, यू नो, फॉर फ्लेवर चेजर्स. सो विजिट page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स, एज यू कैन एक्चुअली गो एंड सी वॉट ऑल यू कैन इन्जॉय, राइट, वॉट ऑल डेलिकेसीज दे हैव. And that's page 3 eatery. It's at hub 121. The next song is a song request. Thank you so much, Mayank, for tuning in and being my loyal listener. Here's the song you requested. Enjoy.

दैट वॉज श्वेता शेट्टीज दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं. एंड कुछ फन फैक्ट्स शेयर कर रही थी आपके साथ इंडिया से रिलेटेड ना, तो आपको बताऊं कि योगा भी जो है ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया. यू नो उसकी जो हिस्ट्री है, योगा की हिस्ट्री, इट स्ट्रेचेज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इवॉल्विंग थ्रू इंडियन फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस बिफोर बिकमिंग अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन. हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है योगा. एंड अगर हेल्थ की बात हो रही है तो आपको जनरली अपना एनुअल चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए. कहीं कोई तकलीफ है, यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू अ डॉक्टर. और अक्सर लोग परेशान इसीलिए होते हैं कि वीकडेज में टाइम नहीं मिलता, वीकेंड पे डॉक्टर मिलते नहीं, तो इसका भी इलाज है.

कोई तकलीफ है, यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू अ डॉक्टर. और अक्सर लोग परेशान इसीलिए होते हैं कि वीकडेज में टाइम नहीं मिलता, वीकेंड पे डॉक्टर मिलते नहीं, तो इसका भी इलाज है हमारे पास. जी हाँ, टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, जो 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. और अब वो एक नए नाम और सेकेंड लोकेशन यानी कि फ्रिस्को में आए हैं, इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल. यू नो इट्स फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एंड ये जो ल्यूनॉक्सी मेडिकल है, इट ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, आपको इन हाउस लैब टेस्टिंग या एक्सरेज, सिटी स्कैन्स, कुछ भी कार्डियक डायग्नोस्टिक्स कराने हैं या हिमालयन मेड्स पार्क की सर्विसेज यूज़ करनी है, दे आर ऑल अंडर वन रूफ. सबसे अच्छी बात दैट दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड. सो होता है ना कि अरे यार अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या 3 हफ्ते या 2 महीने के बाद मिल रहा है. सो आपका ये एकदम यू नो सोल्यूशन है दैट यू कैन गो टू ल्यूनॉक्सी मेडिकल. दे आर ओपन 7 days अ वीक, 8 AM टू 8 PM, walk in any time and no appointment needed.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye. HEB ke naye DFW stores Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
6: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज हैं यार?
8: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं.
7: What?
9: This Friendship Day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
14: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
13: सच में सब संभालेंगे
14: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
15: डालस की धड़कन 104.9 FM Fun Asia Radio.

You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सुन रहे हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने, एंड साथ ही साथ कर रही हूँ कुछ मजेदार, फन और इंटरेस्टिंग बातें शेयर.

टेकन फ्रॉम द मूवी कुरुक्षेत्र, दैट वॉज बन ठन चलिया बन ठन। आप बने ठने या ना भी बने ठने, आप फ्लेवर लाउंज जाके अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा एक एक्सपीरियंस इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ फ्लेवर लाउंज आपके लिए एक गिव अवे भी लाया है। जी हाँ, हेयर योर चांस टू विन दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड on Preston Road in Frisco, right? So ये जो giveaway है is valid only for dine-in and बस listeners एक ही request है that you should not have won this giveaway on any other show at Funasia in the last one month, क्योंकि you know we want lots of listeners to win, तो repeat ना ही करें तो अच्छा है, right? So you can only be a winner once a month here. So Flavor Lounge की ये दाल मखनी या ढाबा style chicken curry आप जीत सकते हैं अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे। सो यू हैव टू गिव मी अ कॉल 972-235-5555। और आपको दो चीज़ें करनी है, एक मुझे बताना है कि फ्रेंडशिप डे किस दिन है, किस दिन सेलिब्रेट होगा फ्रेंडशिप डे, एंड कोई भी ऐसे दो गाने विच कन्वे अ मैसेज टू अ फ्रेंड, लाइक जिसमें कि आप अपने दोस्त को कुछ मैसेज दे रहे हों, ऐसे कोई भी बॉलीवुड के दो गाने मुझे बताने हैं। So the number to the studio once again is 972-235-5555. And the next one, well, that's a song request. Enjoy.

0: ऑलराइट, तो गिव अवे का सवाल था जी। हाँ, पहले तो याद दिला दूं कि गिव अवे थी क्या। गिव अवे वॉज फ्लेवर लाउंज की तरफ से ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर दाल मखनी, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। एंड ये मिलेगी आपको जब आप जवाब देंगे कि फ्रेंडशिप डे कब सेलिब्रेट हो रहा है। एंड कोई भी ऐसे दो गाने जो दोस्त को कुछ कन्वे कर रहे हो। राइट, सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Hey, hi. Good.
0: हाउ आर यू?
1: How are you doing?
0: आई एम डूइंग ग्रेट। व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Sovna.
0: ऑलराइट सोवना, तो बताइए कि कब है फ्रेंडशिप डे?
1: Friendship Day है first Sunday of August, which is falling on the 2nd of August this time.
0: ओके, परफेक्ट, ऑसम। एंड कोई भी बॉलीवुड के दो गाने जो दोस्तों को कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हो?
1: पहला है यारो दोस्ती
0: क्या
1: एंड
0: बात है,
1: दूसरा वुड बी मेरा यार है तू।
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो सोवना, आई एम श्योर यू विल सेलिब्रेट इट विद योर फ्रेंड्स टू ऑन फ्रेंडशिप डे। डेफिनेटली यार, इट्स ऑलवेज फन। पता है, दोस्तों की सबसे अच्छी बात ही होती है कि कोई पूछे कि क्या बात की, तो बात कुछ नहीं की, लेकिन मजा बहुत आया। नहीं,
1: एकदम सही।
0: ऑसम। सो सोवना, आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड आई एम गोना प्ले द यू नो यारों दोस्ती वाला सॉन्ग। बड़े दिन से नहीं सुना है, सो आई रियली वॉन्ट माई लिसनर्स टू लिसन टू इट टू। एंड यू स्टे ऑफलाइन एंड आई विल टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू। ओके,
1: All right,
0: ऑल
1: thank
0: राइट, थैंक
1: you.
0: यू।

Well, that was यारों दोस्ती, right? What a beautiful song. And आपको बताऊं कि आपके लिए प्रभु देवा आ रहे हैं यहाँ. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि बात कुछ ऐसी है दैट मठंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा. जी हाँ, ऑफकोर्स प्रभु देवा जो है वो इंडिया के हमारे माइकल जैक्सन है. एंड ही इज कमिंग लाइव टू DFW. ज्वाइनिंग हिम आर लॉरेन गोटिलेब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नोवेल, हरिणी नीलाकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना फॉर दी अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. मतलब क्या मजा आने वाला है, राइट? दिस इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे August 1 एट द टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटर, ग्रैंड प्रेरी. आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं कॉल करके 248-233-3828. मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. एंड अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो ऑन टू द फन एशिया नेटवर्क सोशल मीडिया पेजेस वेर यू विल इजिली बुक योर टिकट्स एज दे आर ऑन द पिंड पोस्ट, राइट? सो डेफिनेटली मिस मत करिएगा. दैट्स प्रभु देवा लाइव ऑन 1 August, सैटरडे, जस्ट फॉर यू.

Well, that was taken from the movie सपने. अच्छा, मैं ना अब आपको ऐसा फन फैक्ट एक बताने वाली हूँ, रदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि आपको शायद ना पता हो क्योंकि मुझे तो नहीं पता था. अब बात कुछ ऐसी है कि योर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो गर्मियों में ऐसे आता है जैसे मतलब खुल के एकदम, सो इट्स नॉट नेसेसरीली जस्ट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हैं. जी हाँ, आई रिपीट दैट, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इन नेसेसरली जस्ट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, एज डिपेंडिंग ऑन वेर यू लिव एंड वॉट्स योर प्लान, इट कैन इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस, टैक्सेस, फीस, मिनिमम चार्जेस एंड अदर कॉम्पोनेंट्स, राइट? एंड दैट्स वाई टू होम्स यूजिंग सिमिलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन समटाइम्स रिसीव डिफरेंट बिल्स. सो भाई, ये तो हुई घरों की बातें, लेकिन अटेंशन टैक्सेस बिजनेस ओनर्स, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, देन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी एज दे आर प्राउडली सर्विंग टैक्सेस बिजनेसेस सिंस 2002. जी हाँ, इनके कंपेटिटिव रेट्स हैं, दे आर वेरी रिलायबल सर्विस एंड दे कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स फॉर यू. सो आप तारा कमर्शियल एनर्जी को कॉल करें, द नंबर इज 844-428-2808 or visit taraenergy.com today.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
4: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
5: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
2: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

That was बुमरो इलेक्ट्रो फोक. दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, हैज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल. तो संडे होता है हमारा फन फैक्ट सेगमेंट. तो आपको एक ब्रेकिंग अप, जो काफ़ी दुखी सी बात होती है यू नो जनरली, उसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. आपको पता है टेक्नोलॉजी जो हैज़ क्रिएटेड न्यू वेज टू ब्रेकअप. यू नो वंस इट जनरली यूज टू बी फेस टू फेस, कि बस अब दैट्स इट, या फिर कोई खत आप लिख देते थे. लेकिन नाउ वी हैव टेक्स्ट ब्रेकअप्स, वी हैव घोस्टिंग, वी हैव अनफॉलोइंग, वी हैव ब्लॉकिंग, एंड द टेरिफाइंग वी नीड टू टॉक नोटिफिकेशंस, राइट? सो आज की दुनिया में बहुत से तरीके हैं टू जस्ट ब्रेकअप.

That was taken from ए दिल है मुश्किल. अच्छा होता है ना कभी कभी मुश्किल खुद को कंट्रोल करना. सामने वाला अगर यॉन कर रहा है या यू नो हंस रहा है या यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट कॉपिंग देम. ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू कॉपी अदर पीपल्स बिहेवियर, बी इट लाफिंग, यॉनिंग, यू नो एक्सप्रेशंस या फिर इवन स्पीकिंग स्टाइल्स कैन बी कंटेजियस. दैट्स वन रीजन व्हेन वन पर्सन इज लाफिंग अनकंट्रोलेबली इट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द सीरियसनेस ऑफ एन एंटायर रूम. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई ये तो बातों में इतने उलझ गए कि बस वैसे ही हो गए.

0: taken from the movie Rocky और रानी की प्रेम कहानी, that was Jhumka. And another fun fact, आपको पता है first impression कितना important होता है? It can actually influence everything that follows. You know, once we've decided कि यार ये बंदा अच्छा है या ये बंदा उतना अच्छा नहीं है, you know, we may interpret later behavior through that initial impression. तो इसीलिए कहते हैं कि first impression हमेशा अच्छा होना चाहिए. ऐसी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो दैट पर्सन शुड हैव अ गुड इम्प्रेशन अबाउट यू, बिकॉज द होल दिल इज जो है ना, वो होता ना कि दिल क्या करे भाई, अब हमने तो सोच लिया कि ये इंसान अच्छा है तो अब उसकी 100 गलतियाँ माफ़, और अगर हमें किसी इंसान पर शक हो गया तो फिर वो सच बोल बोल के हार जाएगा, बट आपका दिल कहेगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है. सो यू नो, कई बार होता है कि दिल क्या करे.
1: That's right.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फी से पिज्जास खाते हैं।
4: व्हाट,
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, men's and kids wear.
14: Wait, itna sab aur price?
13: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: Main hero.
16: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
17: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
18: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
19: Hi, I'm Rajkumar Rao. And you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

This is KZMP 104.9 FM Fun Asia Radio पर आप सामने रहा छो गुजराती कार्यक्रम साथ संगात अने हूँ छू तमारी साथी संगात थी नीलम दवे। साथ संगात तमारा साथ संगात साथे ईश्वरना आशीर्वाद साथे अने घणी बधी तमारी शुभेच्छाओ साथे दर रविवारनी बपोरे ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio पर प्रस्तुत करी रही छू, ज्यां दर रविवारे गुजराती गीत संगीत भाषा अने साहित्यनो सुंदर समन्वय होय छे। अने आजे पण एक खास विषय छे। कयो खास विषय, कया सवालो, कया जवाबों जवाब तमे आपशो, ए बधी ज माहिती तमने कहीश आ स्तुति, खूब सुंदर स्तुति बाद ऑन 104.9 FM।

0: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
5: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
5: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
5: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
11: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
13: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फाइनेंशिया.

दिस इज के जी एम बी 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप कहेंगे भाई इतना वार्म है ही बार. अच्छा चलिए वेरी कोल्ड वेलकम, नहीं कोल्ड नहीं कह सकते है ना. चलिए वार्म वेलकम तो रहेगा भाई, प्यार तो हमेशा रहेगा. सिर्फ इतना है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो धूप है बाहर कड़ी सी धूप, लेकिन हमारे गाने हमारे साथ रहकर, हमारी ये म्यूजिकल शो के साथ रहकर, फनीशा रेडियो पे साथ रहकर आपके दिल में बाहर आ जाए. हाउ अबाउट दैट राइट. 104.9 एफएम फनीशा रेडियो आपका और हमारा साथ 2 बजे तक का इस कार्यक्रम में जहां पर बातें सिर्फ फिल्मों की नहीं होती, बातें होती है उन म्यूज़िक की, उन संगीतकारों की, इन गीतों की जो हमारे दिल में उतरते हैं, जो बातें होती है वेब सीरीज़ की, OTT, प्राइवेट एल्बम्स से लेके गज़ल्स की, ऐसे बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे गाने जो आप फिल्मों में नहीं सुनते. तो चलिए उसी बात के साथ सुनते ही ये पहला गीत ऑन 104.9 एफएम फनीशा रेडियो विथ मी योर होस्ट नीलम.

मैं अखियां मिलावागा जी। हाँ, इसी गाने के साथ, आपके कॉल्स के साथ हमने यहाँ पर आपकी कार्यक्रम की शुरुआत कर ली है जी। हाँ, आपका, क्योंकि ये है सुर और संगीत की बातें, गैर फिल्मी गाने हो या फिल्मी गाने, वही संगीत, वही रूह की बातें यहाँ पे टिल 2 PM।

थिएटर की दुनिया के नहीं लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के कुछ सुर हम आपको सुनवाते हैं, उसी के साथ प्राइवेट एल्बम्स की बातें और कुछ पाकिस्तानी ड्रामास की भी बातें होती रहेंगी आपके साथ टिल 2 PM। और बहुत सारे गाने आप हमें सुनवाने के लिए कोशिश करते हैं कि फरमाइश करें जी। बिल्कुल, यह है आपका प्लेटफॉर्म। जो भी आप फिल्मी गाना ना हो, गैर फिल्मी गाना सुनना चाहे, चाहे वो गज़ल हो, सूफी बैंड हो, इंडी फ्यूजन हो, या फिर आपने कहीं पे सीरीज में वो गाना सुना, बिल्कुल हमें बताइएगा 9722355555। संगीत हमारी सेहत को अच्छी करती है, राइट? लेकिन अगर कभी कभार भाई संगीत से काम नहीं चलता, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना है लेकिन डॉक्टर्स हमें इतनी अटेंशन नहीं देते, इतना वक्त नहीं देते, तो वेल मैं आपको एक ऐसा नाम बता देती हूँ जो आपको पूरी अटेंशन, पूरी तवज्जो देंगे, एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। 2146666259 आप उन्हें कॉल कीजिएगा, ज़रूर आपको ज़रूर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जल्दी जल्दी मिल जाएगी। और कोई भी आपकी एनुअल फिजिकल की बात हो, विटामिन डेफिशिएंसी की बात हो, एंग्जाइटी केयर, एंड यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आप पूछना चाहे या कंसल्ट करना चाहे डॉक्टर्स के, एक ही नाम, एंड दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, 2146666259। चलिए एक ऐसा गीत आपको सुनवाती हूँ, सुन लीजिए, टैगोर साहब को याद करते हैं। जी हाँ, आपको लगेगा कि भाई टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ वही है, सर रविंद्रनाथ टैगोर को हम याद करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि क्यों ये गाने के साथ मुझे उनकी याद आ गई।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

जैसे हो वैसे आ जाओ, सिंगार को रहने दो। कितनी प्यारी सी बात आपने सुनी, प्यारी सी आवाज़ में श्रेया घोषाल जी की आवाज़ थी, वो शांतनु मोइत्रा जी का संगीत था। और जैसे कि मैंने गाना सुनवाने से पहले आपको कहा था कि टैगोर जी को, टैगोर साहब को मैं हम याद कर रहे हैं, क्यों भाई? तो ये जो एल्बम से आपने सुना ये जो गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, इसका नाम है गुलजार इन कॉन्वर्सेशन विद टैगोर। 2016 में ये बहुत ही खूबसूरत गैर फिल्मी एल्बम है जिसमें गुलजार साहब ने खुद टैगोर जी की 6 कविताएं और 1 गीत का हिंदी अनुवाद किया और अपनी आवाज़ में हर गीत को, हर कविता को उन्होंने नरेट किया है। और इसका संगीत, इस एल्बम का संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने। इस गाने, इसमें जितने भी गाने हैं 6 या 7 गाने हैं, वो श्रेया घोषाल और शान जैसे दिग्गज दिग्गज कलाकारों ने बहुत खूबसूरती से गाए हैं। एंड आई थिंक मैंने सारे गाने इसी एल्बम से आपको सुनवाए भी है। 2016 में ये रिलीज हुआ था, लेकिन इस एल्बम को बनाते, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में गुलजार साहब को 4 साल का समय लग गया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि टैगोर जी के जो साहित्य है वो बंगाल से बाहर पूरे भारत तक घर तक उन्हें पहुंचाना था। एंड ही बिंग सच अ बिग फैन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको ये था हमेशा से मन में कि मैं कभी भी कहीं पर भी मुझे ऐसा कुछ काम करना है जहाँ उनकी कविताएँ, उनकी जो भी बातें हैं, मैं अनुवाद करूं और मेरी आवाज़ में ही वो नैरेट करूं। एंड दैट इज़ हाउ इट केम इनटू द पिक्चर, गुलजार इन कॉन्वर्सेशन विद टैगोर। मैं हूं नीलम आपके साथ, कुछ गैर फिल्मी गाने, कुछ गैर फिल्मी बातें, लेकिन बातें होती है संगीत से भरी हुई एवरी वीकेंड। निरंजन जी की पसंद पे सुनेंगे ये गीत जावेद बशीर जी की आवाज़ में।

जावेद बशीर जिनका खुद का एक बैंड है, ग्रेट ग्रेट पाकिस्तानी सिंगर, उनका बैंड का नाम है मिका हसन बैंड। जी हाँ, जो उनके सूफी कलाम तो होते ही है, लेकिन उसके साथ वो कव्वाली बहुत ही अच्छी गाते हैं। एंड दैट इज जावेद बशीर ऑन 104.9 FM फनीशिया। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। जी हाँ, आपका और हमारा साथ एवरी वीकेंड। वीकेंड में मंडे टू फ्राइडे काम पे, लेकिन सैटरडे संडे आपके साथ। मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं कुछ IT की बातें, लेकिन सैटरडे संडे हम करते हैं संगीत की बातें आप ही के साथ एवरी वीकेंड।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: In today's busy world, when was the last time you truly paused and listened to yourself? Rediscover peace at the Osho Meditation Retreat from July 31st to August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison, Texas. Experience dynamic and silent meditation, joyful music, celebration, and deep inner transformation with Swami Prem Maitreya. Whether you are new to meditation or have practiced for years, you are welcome. Limited seats are available. Register today by calling 214-395-6757 or visit oshouniversal.org.
4: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
6: तो चल, उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
5: What?
7: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: And welcome back. This is KCMP 104.9 FM Phoenicia Radio. Pe main hoon Neelam aapke saath. A very very good afternoon to all of you and a very warm welcome. तारा कमर्शियल एनर्जी को बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उनका नंबर है 844-428-2808 और यू कैन विजिट taraenergy.com. 2002, जी हाँ, इतने सालों से आप ही की सेवा में, कम्युनिटी की सेवा में, विद कम्पिटिटिव रेट्स एंड रिलायबल सर्विस, एक ही नाम, तारा कमर्शियल एनर्जी। हम अक्सर खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए छोटे छोटे एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए कोई बड़ा एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन है, हाउस वार्मिंग है, छोटी मोटी पार्टी है या फिर वेडिंग है, एक ही नाम है, दैट इज वेनेसा इवेंट। जी हाँ, आज ही उनको कॉल कीजिएगा, वेनेसा इवेंट, जहाँ पर फोटोग्राफी से लेके इवेंट की कैटरिंग हो या कुछ भी आपके इवेंट की बातें हो, सारी बातें एक ही नाम, एंड दैट इज वेनेसा इवेंट। 4694428770, वंस अगेन दैट इज 4694428770। योर सेलिब्रेशन पार्टनर, जी हाँ, जब आप आपकी ज़िंदगी के कुछ अहम अहम माइलस्टोन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत यादें बनाने जा रहे हैं, एक ही नाम आपके लिए, एंड दैट इज़ वेनेसा इवेंट। और भी कुछ इवेंट्स की बातें हम करेंगे, क्योंकि भाई प्रभु देवा यहाँ पर आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, क्या है, एंड उसी के साथ 15th August को है INT का आनंद बाज़ार, उसकी बातें, लेकिन कुछ बातें, कुछ गाने थोड़ी देर के बाद।

इश्क मुर्शिद जी हाँ, इसे सुना आपने, तेरा मेरा प्यार अमर ऑन 104.9 FM पन एशिया रेडियो। सीरीज़ वेब सीरीज़ की बातें, पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत सारी बातें होती है। आपके कुछ रिकमेंडेशन होते हैं, आपके कुछ हमें सजेशन होते हैं कि भाई आजकल क्या देखना चाहिए, और हम जो देखते हैं वो भी आपको बताते हैं कि कौन सी हमें बातें अच्छी लगी ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपको नाइट मैनेजर की बात याद है? वो जो एक वेब सीरीज़ थी जिसमें अनिल कपूर थे और उनके साथ थे आदित्य रॉय कपूर, बहुत ही सुपरहिट रही थी वो थ्रिलर। तो उसकी सीज़न 1 सीज़न 2 मैंने देखी। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, आई कुडंट फाइंड सीज़न 2 एनीवेयर। तो खैर, वो दैट्स ऑफलाइन टॉपिक, मैं आपसे ऑफलाइन पूछूंगी, ऑफ एयर पूछूंगी कि भाई कहाँ ढूंढ सकती हूँ मैं, क्योंकि आई कुडंट फाइंड दैट, आई नो इट डिड रिलीज। सो खैर, अब नाइट मैनेजर की सीज़न 3 की तैयारी चल रही है, और सुनने में यह आया है कि उनके जो मेकर्स है वो उसकी उन्होंने स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू कर दिया है, और उसी के साथ शूटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। सो मे बी इन अनदर 3 to 4 months, बाय एंड ऑफ दिस ईयर कहा जाता है कि ये सीज़न रिलीज हो जाएगी। और आप जानते हैं ना कि दैट इज़ अ बिल्कुल इंस्पिरेशन। जी हाँ, कहा जाता है कि टर्की की एक है सीरीज जिससे ये इंस्पायर हुई है कहानी। सो टर्की की सीरीज से इंस्पायर हुई है द नाइट मैनेजर, और सीज़न 1 बहुत ही सुपरहिट रही, सीज़न 2 भी अच्छी रही, और सीज़न 3 अब आने वाली है बाय एंड ऑफ 2026। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम रहेंगे टिल 2 PM।

पार्थिव गोहिल की आवाज के साथ ही दिव्या की आवाज आओ ना गले लगाओ, यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग राइट? आर डी बर्मन साहब का था वो गीत, इसे एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया कोक स्टूडियो भारत के लिए पार्थिव गोहिल के साथ दिव्या ने। और वही हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि देखिए हमारे सिंगर्स जो है वो इतने वर्सेटाइल होते हैं, वो इतने क्रिएटिव होते हैं। कला का नाम ही है क्रिएटिव होना। आप कुछ अलग अलग सोचते रहे, अलग अलग करते रहे अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए, वही कलाकार है। और हमारे संगीतकार, हमारे कलाकार जो हमारे दिग्गज संगीतकार हो गए, दिग्गज कलाकार हो गए, गाने वाले हो गए, कला जिनकी भी बात कर लो, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए दे डू सच ए वंडरफुल जॉब। एंड दिस इज़ वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल। आओ ना गले लगाओ ना इन द कोक स्टूडियो।

प्रभु देवा लाइव, जी हाँ, उन्हें आप देख सकते हैं सैटरडे अगस्त 1 एट द टेक्सास ट्रिस्टर सीयू थिएटर ग्रैंड प्रेरी में। एंड वंस अगेन, अगर आप उनको देखना चाहें, इट इज़ 1 अगस्त, शनिवार का दिन है। 2482-3328 इज़ द नंबर टू कॉल फॉर द टिकट्स। मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क, आप जानते ही है। एंड दैट इज़ प्रभु देवा, जिसे हम कहते हैं इंडिया माइकल जैक्सन। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर इंडिपेंडेंस डे लाइक एवरी ईयर, ऑफकोर्स 15 अगस्त होती है हमारी ये बातें। एंड INT ऑल्सो सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। इस बार आनंद बाजार इज हैपनिंग ऑन द सेम डे, दैट इज 15 अगस्त सैटरडे। एंड ये हो रही है बातें आपके लिए फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कॉमरिका सेंटर इन फ्रिस्को। इट इज कम्प्लीटली इनडोर्स एंड फ्री फॉर एंटायर कम्युनिटी। दैट इज INT's इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, INT's आनंद बाजार, हैपनिंग ऑन 15 अगस्त 2 PM ऑनवर्ड्स।

रे रे ग सम प ध ध नि सा सम प ध ध नि सम प ध नि सा नि सा ज ग ग म प प ग म ध ध नि सा सा नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग स सा

जसरान अली की आवाज़ में के तेरा जिया हो रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना हमारे साथ 104.9 FM फन एशिया रेडियो। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। जी हाँ, हमारी और आपकी मुलाकात होती है दोपहर के 12 से 3 के बीच में ऑन सैटरडेज एंड संडेज 12 से 3 के 2 के बीच में। जी हाँ, सिर्फ 2 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ, लेकिन कोशिश होती है जितने भी लम्हे जितने भी पल आप हमारे साथ बिताए वो बहुत ही म्यूजिकल हो और सुनने के बाद आपकी आफ्टरनून हो वो बहुत ही म्यूजिकल बन जाए। इसी कोशिश में कोई भी मौसम हो आपके दिल को बरकरार कर रखने के लिए, आपके दिल के मौसम को बरकरार रखने की कोशिश एवरी वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कॉल्स। बस यूं ही प्यार बरकरार बनाए रखेगा एवरी वीकेंड हमारे और आपके फन एशिया रेडियो पे। मैं हूं नीलम, लेती हूं आप सभी से आज्ञा अनुमति, अब मुलाकात होगी सैटरडे अगले शनिवार की दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग फन एशिया रेडियो।

0: आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टैक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है, अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल और टैक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
12: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
0: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
12: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app. App for exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Superhit.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
14: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
15: All right, everyone, welcome back. You're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Welcome, Dallas. I'm your RJ Rhea for the next hour. That's right, I have you at 2 p.m. to 3 p.m. every single Sunday. Definitely the best hour of my week, and hopefully one of the best hours of yours. We have lots of fun things planned, including talking about all the sports world, as Sanvi and I love to do, riddles, songs, so much more. But of course, we do have a fun little giveaway later in the show today, so be sure to stay tuned for all of that.
16: धूल रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए.
17: सुधी है शहर ला कमा कमा को वरला अपन अपनी मुंडी कर दे येन्ना उठरुंगा.
16: अखियां करे जी हजूरी

0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम कहाँ है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है तेरी?
1: घर पे?
2: तो फोन क्यों किया?
0: फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
3: बड़ा बदतमीज है तू। तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं। ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्रिश क्रिश,

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: अरे वो केक आया क्या?
9: डीजे कौन हैंडल करेगा?
8: डेकोर वाले को कॉल किया।
9: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
8: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
9: ऑसम इवेंट्स?
8: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, Amreen Hasnat and her team will handle everything.
9: Matlab planning to execution. Tension khatam.
8: Not just that. Book your next event and get free professional emceeing by Amreen Hasnat herself.
10: Call now at 214-725-8255.

0: 21456. That's 21457257466. And turn your celebration into an awesome event. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
1: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुककीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
9: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

और इसी गाने के साथ माधुरी दीक्षित रातों रात बन गई धक धक गर्ल. वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. वेल टुडे इट्स टाइम फॉर नॉन स्टॉप 90s, जिसमें बारी है 1992 की हिट फिल्मी गानों की. सो शुरुआत की हमने बेटा फिल्म के इस गाने के साथ, जो कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर पर पिक्चराइज किया गया था. आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की. आई होप दिस ब्यूटिफुल संडे इज गोइंग वेल फॉर यू सो फार. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय प्रभु देवा लाइव कॉन्सर्ट. जी हाँ, इंडियाज माइकल जैक्सन विल बी हियर टू एंटरटेन यू ऑन सैटरडे ऑगस्ट 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. यू कैन गेट योर टिकट्स बाय कॉलिंग 248-233-3828. Now you can also check out the Funasia social media page to get additional information. So aaiye phir chalte hain 1992 ki second highest grossing film ke gaane ki taraf.

दीवानगी, दीवाना फिल्म का आई बिलीव टाइटल ट्रैक दिव्या भारती और शाहरुख खान पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी अलका याग्निक और विनोद राठौर की। 19 मिनट्स पास्ट 3, स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और ये है हमारा सेगमेंट नॉन स्टॉप 90s, जिसमें के आज हम फोकस कर रहे हैं 1992 में रिलीज होने वाली हिट फिल्मों के गानों पर।

खुदा गवाह का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में। याद होगा आपको यकीनन इस फिल्म के लीड अदाकार थे श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन। लेट्स कंटिन्यू नॉन स्टॉप 90s विद दिस नेक्स्ट ट्रैक।

दिव्या भारती के लिए यकीनन 1992 एक बेहतरीन साल था, बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ द टॉप 10 मूवीज, मेनी ऑफ देम इंक्लूडिंग दिस वन दीवाना, जिसका गाना आपने अभी सुना, एंड उसके बाद ये शोला और शबनम. 26 मिनट्स पास्ट 3, हमारे नेक्स्ट गाने की लीड भी दिव्या भारती ही है इन द फिल्म विश्वात्मा. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू नॉन स्टॉप 90s, जिसमें आज बारी है 1992 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिट गानों की.

0: सात समंदर तो नहीं, लेकिन मिकिनी के इस स्टूडियो में जरूर आती हूँ हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिल से. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात. वी आर गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक वी विल कंटिन्यू नॉनस्टॉप 90s ऑन 104.9 FM.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
10: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं.
10: व्हाट?
12: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल August 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं.

0: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
1: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
0: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
2: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM। यू आर ट्यून्ड इन टू दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात, एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय होको। आई नो ये नाम जानते हैं, पहचानते हैं। इट हैज बिन पार्ट ऑफ आई गेस जनरेशंस बैक इन इंडिया, बट नाउ गेस व्हाट, दे आर हियर इन नॉर्थ टेक्सास। सो या तो अगर आपको उनकी चना पूरी याद रही है, या सैंडविचेस का मूड है, बहुत मजेदार करीज भी होती हैं। दे ऑल्सो हैव दिस होको कोल्ड कोको दैट इज वेरी पॉपुलर। वॉ, यू डोंट हैव टू गो टू इंडिया नाउ, यू कैन विजिट देयर स्टोर हियर ऑन 2693 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। सो नाउ ऑल द ऑथेंटिक फ्लेवर्स दैट यू लव बैक होम are right here in Frisco. You can get all the details about Hoco by visiting their website, which is hoco.us. And their motto, come hungry and leave with a taste of India. It is 36 minutes past 3 on this 26th of July, 2026. And it is a Sunday afternoon. I'm so glad you could join us. Forecast dete chale. Well, fil waqt it's 97 degrees Fahrenheit. Yes, and it feels like 97 too. It's pretty hot out there. Today's low was 80. Tomorrow it's going to be just as warm, high of 99 and a low of 79 degrees Fahrenheit. जिस तरह हम ये मौसम का हाल बताते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम अपनी ज़िंदगी का फोरकास्ट भी देख सकते, जान सकते, तो हमें पता चल जाता कि आने वाले दिनों में क्या हमें छतरी की ज़रूरत होगी, कहीं हमारी ज़िंदगी पर बरसात होने वाली है। अब ये भी हो सकता है कि वो बरसात खुशियों की हो, और ये भी हो सकता है कि वो बरसात दुखों की या गम की हो। बट इफ़ ओनली वी न्यू, राइट? बट अगर हम वो जान लें तो आई गेस वो स्ट्रगल नहीं रहेगा। एंड यू नो, ऑलवेज आई गेस वी हैव टू ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान, बिकॉज गॉड इज़ द बेस्ट प्लानर। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर वॉन्डरिंग आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, वेल नो वन कैन से, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा।

खिलाड़ी फिल्म का ये गाना अलका याग्निक और अभिजीत की खूबसूरत आवाज में सुन रहे थे आप। ये गाना अक्षय कुमार और आयशा झुलका पर पिक्चराइज किया गया था, फ्रॉम द थ्रिलर खिलाड़ी। इफ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, डोंट वरी, कुछ ज्यादा मिस नहीं किया आपने। नॉन स्टॉप 90s का सेगमेंट चल रहा है और आज शोकेस कर रहे हैं हम 1992 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गाने। और अगर ऐसे में हम जो जीता वही सिकंदर का ये गाना प्ले ना करें, ये तो फेयर नहीं होगा।

पहला नशा पहला खुमार, जब भी ये गाना सुनते हैं, इट हैज सच अ सूदिंग मेलोडी, इट काम्स योर नर्व्स, डजंट इट? 44 मिनट्स पास 3, यू आर लिसनिंग टू दिल से. ये थी आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की. द सॉन्ग टेकन फ्रॉम द फिल्म जो जीता वही सिकंदर, पिक्चराइज किया गया था आमिर खान, पूजा बेदी और आयशा झुलका पर. आइए नॉनस्टॉप 90s को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आपको जिगर फिल्म के इस गाने की तरफ.

अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, तुझको बाहों में भर लिया। जिगर फिल्म का ये गाना करिश्मा कपूर और अजय देवगन पर पिक्चराइज किया गया था। आवाज़ें थी उदित नारायण की। आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप 90s। आइए लेकर चलते हैं आपको यलगार फिल्म के इस गाने की तरफ। याद है आपको यलगार फिल्म में फिरोज खान, संजय दत्त, मनीषा कोराला और नगमा थे इस फिल्म में, और ये गाना खासकर बहुत पॉपुलर हुआ था।

लगे। उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द 1992 हिट फिल्म यलगार। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, ये है प्रोग्राम दिल से और आज नॉनस्टॉप 90s के सेगमेंट में हम सुनवा रहे हैं अब 92 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गाने।

हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, टेकन फ्रॉम द फिल्म जान तेरे नाम। इट इज 57 मिनट्स पास 3 नॉन स्टॉप 90s पहुंचता है अपने इख्तिताम को इस आखिरी गाने के साथ, टेकन फ्रॉम द 1992 हिट फिल्म निश्चय, स्टारिंग विनोद खन्ना, सलमान खान एंड करिश्मा कपूर।

0: किसी हसीन यार की तलाश है, ये गाना अमित कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप। पिक्चराइज किया गया था सलमान खान पर, एंड दिस वाज द लास्ट सॉन्ग फॉर आर नॉन स्टॉप 90s। कमिंग अप नेक्स्ट इज शब्द, जिसमें अगर आपने ये पहला गाना सुनकर ही गेस कर लिया कि आज का शब्द, आज का वर्ड क्या है, तो आप जीतेंगे सैन इडली रेस्टोरेंट से डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। और जैसा कि आप जानते हैं, सैन इडली रेस्टोरेंट इज 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहां आपको डोसा के अलावा हर तरह के साउथ इंडियन फेवरेट्स मिलेंगे, प्लस द बेस्ट फिल्टर कॉफी एवर। दे आर लोकेटेड राइट एट द कॉर्नर ऑफ 121 एंड कस्टर। सो कमर्शियल ब्रेक के बाद सुनिए गाना और गेस कीजिए आज का वर्ड।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स।
12: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा।

0: काफी है। तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
1: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और visit astrologereeshwar.com.
2: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
3: तो चल उन सेल्फीज से पिज़्ज़ास खाते हैं।
2: What?
4: This friendship day, bring your friendship to Fun Pizza Kitchen. Post a selfie with your friends on Instagram, tag Fun Pizza Kitchen and enjoy 10% off your bill or a free garlic bread. Offer valid till August 3rd. Visit funpizzakitchen.com for more details.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

1950s में रिलीज हुआ ये गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं, हमारे आज का वर्ड, आज का लफ्ज़, आज का शब्द पहली दो लाइनों में है। ध्यान से गौर से सुनिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि आज का वर्ड क्या है और जीतिए इनाम फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट।

जलते हैं जिसके लिए, सुनील दत्त और नूतन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना तलत महमूद की आवाज में सुन रहे थे आप। एंड सो फार मुझे बहुत सारी कॉल्स आई गेस करने के लिए कि क्या वर्ड है। पीपल सेड आंखें, तेरे लिए वगैरह वगैरह, लेकिन जो वर्ड है वो किसी ने भी गेस नहीं किया। दैट्स ओके। अब जो मैं गाना प्ले करूंगी, अब ये सुन के तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो कि कभी कभी क्या होता है, एक वर्ड के दो वर्जन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम वर्ड चुनते हैं खाना, राइट, तो खाना खाइए, खाते विल ऑल कम अंडर द सेम यू नो मेन वर्ड, राइट, के खाने से रिलेटेड है गाना, खाइए, खाते, खाना और समथिंग लाइक दैट, राइट। एनी वे, खैर, अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगी वो 70s की फिल्म का है। आप सोच रहे होंगे 50s से मैंने अचानक जंप लगाई 70s। अपेरेंटली इस वर्ड से मुझे 60s का कोई गाना नहीं मिला, तो आई एम सॉरी, हम 70s से ही अब 70s की तरफ जाएंगे और 70s में काफ़ी सारे गाने हैं। तो अब ये सुनिए, अब जब ये सुनेंगे ना अगला गाना, आप फौरन समझ जाएंगे कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज़, आज का शब्द क्या है।

जलते हैं जिसके लिए हमारे इस सेगमेंट का पहला गाना था, उसे सुनकर तो कोई गेस नहीं कर पाया, लेकिन जब हमने ये दूसरा गाना लगाया तो सभी ने गेस कर लिया कि आज का वर्ड, आज का शब्द है जलना, जलिए या जलने से रिलेटेड कुछ. एंड आज हमने एक नहीं बल्कि दो विनर्स चूज किए, बिकॉज पीपल हु कॉल रिपीटेडली, आई वांटेड टू मेक श्योर आई गिव देम अ चांस. सो कांग्रेचुलेशंस हिरल एंड कुणाल, आप दोनों ने विन किया है सैन इडली रेस्टोरेंट से मजेदार डोसा ऑफ योर चॉइस एज वेल एज फिल्टर कॉफी.

जले। चिचोर फिल्म से लिया गया ये गाना आप यसुदास जी की आवाज में सुन रहे थे। वैसे शब्द सेगमेंट की जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इस सेगमेंट में आपको बड़े अनोखे और यूनिक गाने सुनने को मिलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम वर्ड पे फोकस कर रहे होते हैं और ऐसे में हमें 50s, 60s, 70s के जो भी अच्छे गाने हैं वो सुनने को मिलते हैं, जो आम तौर पर रोज़मर्रा के जो सेगमेंट्स या शोज़ रेडियो पर आप सुनते हैं उनमें प्ले नहीं किए जाते। जैसे कि ये अगला गाना 1978 की फिल्म गमन से लिया गया है एंड आई एम श्योर कि ये आपको जरूर अच्छा लगेगा।

इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अगर आप परेशान हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। वो कहते हैं ना, दुआ में बड़ी ताकत होती है, क्या पता किसकी दुआ लग जाए। सो माई प्रेयर्स आर विथ यू इफ़ यू आर सफरिंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। दिस टू शैल पास, यू नो, ये बात हमें याद रखनी होगी। जैसे खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, इसी तरह गम भी सदा हमारे साथ नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा यू हैव हिट रॉक बॉटम, कि अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। पर यू नो वॉट, इससे बेहतर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इससे बुरा तो अब नहीं हो सकता, ये तो आपने ही सोच लिया। यानी कि अब लाइफ सिर्फ बेहतरी होगी, हालात ज़रूर सुधरेंगे, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 22 minutes past 4, यू लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM, जिसमें ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है शब्द का, जिसमें हम चुनते हैं कोई एक वर्ड, कोई एक लफ्ज़, और उसी लफ्ज पर रिलेटेड हम आपको गाने सुनवाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेकेड्स। तो 70s का तो हो गया काफी, आई थिंक चले 80s की तरफ। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म अब्दुल्ला से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो आई बिलीव जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 एफएम। शब्द का सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज का शब्द है जलना या जलन। लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रैक।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
0: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
4: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
7: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: For decades, one man has made the world dance.
1: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
3: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिलवक स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हुए हैं. दैट इज 4:35. टुडे इज संडे जुलाई 2026 एंड उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी उमर ख्वाजा. इफ़ यू आर नीडिंग हेल्प विद योर इंजरी एक्सीडेंट, गेट इन टच विद हिम. दे डू ऑफर फ्री कंसल्टेशन. 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com. The consultation is free, plus they don't charge you any fees unless you win. So don't wait, give him a call. That's attorney Omar Khwaja. He knows how to deal with insurance companies. For those of you who have just joined us, शब्द का सेगमेंट पेश किया जा रहा है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं एक वर्ड और फिर उसी से रिलेटेड आपको सुनवाते हैं बेशुमार गाने, कुछ नए कुछ पुराने. शुरुआत करते हैं पुराने गानों से और आज हमने 50s के गानों से शुरुआत की थी और अब हम 90s तक पहुंच चुके हैं. तो आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, विच इज़ टेकन फ्रॉम द मूवी दिल से. और फिर से बता दूँ कि आज का वर्ड क्या है. इट इज़ जलना, जलिए और जला. सो ये है हमारा 90s का गाना.

अंजलि, लता मंगेशकर की आवाज में दिल से फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज किया गया था। शब्द सेगमेंट में आज का वर्ड है जलते जलना वगैरह वगैरह, एंड वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द ओल्डीज ऑन टू द न्यूअर स्टफ। सो जैसे जैसे आप गाने सुनेंगे, आप नोट करेंगे कि हर नया गाना पिछले गाने से रिलेटिवली नया है। जैसे कि ये अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म लगान से लिया गया है। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अमरीन हसनाथ।

उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना जो आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द फिल्म लगान. इट इज़ 4:43 PM. यू आर लिसनिंग टू शब्द जिसमें आज का वर्ड है जलना, जलन, जला, एट्सेट्रा.

बैक इन फ्रॉम द फिल्म कभी खुशी कभी गम, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे ये आप वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लव सॉन्ग्स ऑफ द डेकेड दैट इज सूरज हुआ मध्यम। आवाजें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। इट्स 47 मिनट्स पास्ट 4 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से। 96 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर इन द मिकिनी एरिया। टुडेज हाई वाज 98 एंड लो ऑफ 80। कल का मौसम भी ऐसा ही कुछ गर्मा गर्म रहेगा। हमारा अगला गाना भी शाहरुख खान की ही एक फिल्म से है। आज शब्द के सेगमेंट में हमारा वर्ड है जलना, जलिए या जलन।

धीरे जलना शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म पहेली से लिया गया था। वो फोक्स इतने सारे गाने हमने प्ले किए पिछले एक घंटे में रिलेटेड टू आर वर्ल्ड टुडे एंड इट्स अमेजिंग आई स्टिल हैव अ होल लॉट मोर, लेकिन चूंकि हमारा ये सेगमेंट यहीं ख़त्म हो रहा है तो आइए चलते हैं सेगमेंट के आखिरी गाने की तरफ। नाउ आई एम स्टिल हियर टिल 6 PM एंड आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेगमेंट एट 5 PM। तो आइए अब सुनते हैं शब्द सेगमेंट का आखिरी गाना। एज आई हैड मेंशन अर्लियर कि आज के सारे गाने वर रिलेटेड टू द वर्ड जलना, जले एटसेट्रा।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan, mummy.
8: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
10: Mera?
8: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Bhook lagi hai? Ya bas kuch exceptional khana hai?
13: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood

0: is actually craving.
1: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
2: Hello, Texas Parivar. Kya aapko pata hai, there is a first-time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
3: यार मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार.
4: तो चल उन सेल्फी से पिज़्ज़ास खाते हैं.
3: व्हाट
5: दिस फ्रेंडशिप डे ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज़्ज़ा किचन. पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम टैग फन पिज़्ज़ा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड. ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd. विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स.
6: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
7: सच में? सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
9: खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात एंड आई बी विद यू टिल 6 PM. स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 5:05 हुए हैं, दैट इज 5 minutes past 5. टुडे इज द 26th of July 2026 एंड इट्स ए स्मैशिंग संडे इवनिंग. आई होप कि आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने इस वक्त को इंजॉय कर रहे हैं. वो कहते हैं ना, जो बीता वक्त जो है वो लौट कर नहीं आता. एंड एवरी मोमेंट इज अ मोमेंट दैट यू शुड सेलिब्रेट लाइफ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. हो सकता है एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, बट यू नो व्हाट, एवरी मोमेंट कैन बी परफेक्ट. ये किसने कहा कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज, बिकॉज इट्स नॉट. लाइफ इज एक्चुअली फुल ऑफ स्ट्रगल्स. इन बिटवीन कहीं कहीं हमें खुशियां मिल जाती हैं, शायद इसीलिए वो कौन सी थी मूवी, कभी खुशी कभी गम, इसीलिए तो इतनी हिट गई, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ, कभी खुशी कभी कम. ऑलराइट, अब मेरा काम तो ये है कि ये जितने घंटे भी मैं आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, मैं आपको थोड़ी सी तो खुशी दूँ. आई नो कि आपकी लाइफ नहीं बदलेगी इस रेडियो शो के ज़रिए, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ पल जो आप हमारे साथ बिताएंगे, अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाती है या दिल में कोई अच्छा गीत सुनकर सुकून आ जाता है, तो दैट मीन्स I did a good job. So that is all my goal is today. So, अब लेकर चलती हूँ आपको एक बहुत खास गाने की तरफ. Well, गाने तो सारे ही अच्छे होते हैं. इस गाने की खासियत ये है that this has been sung by a personal friend. नाम है उनका अदनान कुरैशी और guess what? He is actually a Dallas-based singer and musician. और उन्होंने कई कॉन्सर्ट्स में लाइव परफॉर्म भी किया. इनफैक्ट उन्होंने तकरीबन 30 गाने बनाए हैं, लाइक हिज ओरिजिनल सॉन्ग्स दैट ही हैज़ क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड एंड परफॉर्म्ड. इनफैक्ट उनका एक गाना जिसका नाम है चुप, वो एक ओएसटी में फीचर किया गया, फिल्म ड्रामा था एक्चुअली, उसका नाम था नीम. एंड ही इज ऑल्सो एक्टेड, सो वो सिर्फ एक टैलेंटेड सिंगर नहीं बल्कि एक्टर भी हैं. और हम टीवी का एक ड्रामा था जिसका नाम था ये दिल मेरा. हो सकता है कि आपने देखा हो अदनान कुरैशी का ये ड्रामा, नहीं देखा तो अब आप देख सकते हैं. तो उनका जो लेटेस्ट गाना है इट्स टाइटल्ड इससे पहले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आज हम आपको सुनवाएं. और इसमें अहमद फराज साहब का कलाम है जो उन्होंने एज इन अदनान ने अपनी आवाज से उसे जिंदा कर दिया है. एंड दिस पोइट्री इज अबाउट लाइफ एंड अ हॉन्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन चूजिंग सेपरेशन विद डिग्निटी बिफोर लव टर्न्स इनटू बिट्रेयल. आप अगर चाहें तो, अगर आपको ये गाना पसंद आता है तो बाद में आप YouTube या Spotify जहां पर भी सुनना चाहें आप सुन सकते हैं. फिलहाल तो हम आपको सुनवाते हैं दिल से प्रोग्राम में. आइए सुनते हैं अदनान कुरैशी का ये नया गाना.

इस गर्मा गर्म मौसम में कुछ ठंडे मीठे सुरीले गीत आपको सुनवा रही हूँ, स्टार्टिंग ऑफ विद अदनान कुरैशी सॉन्ग। और अब जो गाना आपने सुना सुनीति चौहान की आवाज में, फिल्म चमेली से लिया गया था। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। व्हाई डू देयर पेशेंट्स लव देम? बिकॉज फॉर देम यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट बट अ फैमिली। दे डोंट मेक यू वेट एंड दे मेक श्योर दैट दे गिव यू द 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट दैट दे हैव सेट फॉर यू। And they have been serving this community for years now. And 30 minutes mein, by the way, काफी कुछ कर सकते हैं वो। For example, if you go for an annual physical, they can do that. Anxiety care, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing करते हैं, and so many other services that are available at Passion Health. So आप आज ही call करें and schedule your appointment. 214-666-6259 है उनका number. Remember, that's Passion Health Primary Care. Your health is their passion.

रणबीर कपूर और सोनम कपूर की पहली फिल्म सांवरिया से लिया गया था ये गाना और आवाज थी शान की. यू नो ओवर द कोर्स ऑफ माय मीडिया करियर आई हैव इंटरव्यूड मेनी आर्टिस्ट एंड शान हैपेंस टू बी वन ऑफ देम एंड आई हैव टू से दैट बाय फार ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल मॉडेस्ट एंड मैं क्या उनके बारे में कहूँगी, ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ. बहुत से स्टार्स के बारे में ऐसा कहा जाता है लेकिन यू नो वो लोग उनकी तारीफ करने के लिए कई दफ़ा झूठ मूठ भी बोलते हैं, उनको खुश करने के लिए भी बोलते हैं. बट बिकॉज मेरा शान के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहा, आई हैव टू से कि वो एक बेहतरीन इंसान है. लाइक आई डोंट अबाउट एज एन आर्टिस्ट ही इज़ वेरी गुड एंड वेल लव्ड एज वेल, लेकिन एज अ पर्सन एज वेल उनका जितना भी मेरे साथ इंटरेक्शन था वॉज अमेजिंग, स्पेशली बिकॉज आई कुड कंपेयर हिम टू ऑल द अदर आर्टिस्ट दैट आई हैड इंटरव्यूड. सो आई हैव अ स्पेशल स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर शान इन माई हार्ट.

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं ही।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
17: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभाल लेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

विपाशा बासु और अजय देवगन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म आक्रोश से लिया गया था। आई होप यू एंजॉयड इट। इट्स 41 मिनट्स पास्ट 5। यू लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 एफएम। एंड आई नो आई हैड मेंशनड इट यस्टरडे, रिमाइंडिंग यू गाइस अगेन, इफ यू नीड एनी हेल्प प्लानिंग और मैनेजिंग योर इवेंट, I would be more than happy to help you with my full service event company, Awesome Events. किसी भी तरह की आपको अगर मदद चाहिए, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई रिसेप्शन हो, मेहंदी हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, डांस पार्टी हो, या कोई कॉन्सर्ट हो, एनी टाइप ऑफ अ स्मॉल और बिग इवेंट, इफ यू नीड हेल्प आई कैन हेल्प यू, नॉट जस्ट कोऑर्डिनेट विद द वेंडर्स, बल्कि अगर आप बाकी मैनेजमेंट खुद कर चुके हैं, एज इन रिक्रूट कर चुके हैं अपने वेंडर्स, आई कैन हेल्प यू manage the day of the event, kyunki us din to sabse zyada kaam hota hai and you want to enjoy your event. So let me know if there's anything I can do for you. I do specialize in entertainment, especially agar aapko koi professional MC chahiye apne event ke liye, I would be happy to be part of your event. 214-725-7466 hai mera number jahan aap mujhe call kar sakte hain. Again, that is 214-725-7466.

अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक अरिजीत सिंह की आवाज में दिल को छू लेने वाला ये गीत फिल्म तमाशा से लिया गया था। आई होप आपने इसे एंजॉय किया। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय PMJ ज्वेल्स। जी हाँ, हिंदुस्तान की मशहूर ज्वेलरी चेन अब फ्रिस्को में है एंड देव गॉट दीज ब्यूटिफुल गोल्ड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन, जिस में कि आप अपने लिए या किसी और के लिए गिफ्ट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दे आर प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गथमनेनी। PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस एंड नाउ इट्स राइट हियर इन आवर टाउन इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट। PMJ ज्वेल्स, डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी।

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा था हमारा 3 घंटे का ये सफर, 3 घंटे का ये म्यूजिकल साथ. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट टू. इस आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत. आपसे होगी नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर येट अनदर एडिशन ऑफ दिल से.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
12: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338।

0: 4697343338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
6: Hi, this is Ranveer Shori, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूं इस बहुत ही खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारे फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फोगी, गर्मी वाली। और जी हाँ, आज जैसे बहुत बहुत बहुत कड़ाके की गर्मी वाली, कैसे भी हो हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, ये गाना सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी मिशन कश्मीर। ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले बहुत ही जश्न में डूबे हुए गाने आज आपको सुनवाऊंगी। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: यार, मेरे फोन में हम दोनों के कितने सेल्फीज है यार।
11: तो चल उन सेल्फीज से पिज्जास खाते हैं।
10: व्हाट?
12: दिस फ्रेंडशिप डे, ब्रिंग योर फ्रेंडशिप टू फन पिज्जा किचन। पोस्ट अ सेल्फी विद योर फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग फन पिज्जा किचन एंड एंजॉय 10% ऑफ योर बिल और अ फ्री गार्लिक ब्रेड। ऑफर वैलिड टिल ऑगस्ट 3rd। विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर डिटेल्स।
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
5: कितने आदमी थे?
21: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

गुड इवनिंग दोस्तों, एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। और आज के संडे की शाम में आपको गाने सुनवा रही हूँ ऐसे जो आपके दिल को दे सुकून और पूरे के पूरे चाशनी में डूबे हुए। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक।

0: अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाज में दोस्तों सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी दिवाली। दिल को सुकून देने वाले और चाशनी में डूबे हुए बहुत ही प्यारे नगमे आप सभी को सुनवा रही हूँ। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट।
1: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
2: बची है पूरे आठ आने। धुन सुनाओ ना।
1: I don't know, you know.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उसी भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई।
2: बहुत ही खूबसूरत गाने हैं दोस्तों इन दोनों के, स्पेशली मैं जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गाए हुए गाने सुनती हूँ ना, एक अलग ही मुस्कान आ जाती है चेहरे पे और दिल को बहुत ही अमेजिंग सा सुकून मिलता है। तो वही तो मेरा इंटेंशन है आज के लिए आप सबके लिए कि बहुत ही दिल को सुकून देने वाले चाशनी में डूबे हुए ब्यूटिफुल गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। ये गानों का सिलसिला तो चलता रहेगा दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं दैट इफ यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल, यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर यू आर कंपेंसेटेड। यू डोंट पे अंटिल यू विन। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज अटॉर्नी omar.com।

वन ऑफ माई मोस्ट मोस्ट फेवरेट मूवी एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग संग बाय द ग्रेटेस्ट रेखा भारद्वाज जी. दोस्तों ये गाना सुने थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी बर्फी. सुन रहे 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी अपनी आरजे पूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. एवरी संडे की शाम 206 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ. आज के इस बहुत ही खूबसूरत से शाम में आपको गाने सुनवा रही हूं ऐसे जो आपके दिल को दे सुकून पूरे के पूरे चाशनी में डूबे हुए. विद दैट चलिए आपको लेकर चलती हूँ ये अगले गाने की तरफ.